0: SBS साउथ एशियन
1: चले गए, सब खाना खा के दारू पी के चले गए,
2: सब खाना खा के दारू पी के चले गए,
3: सब खाना खा के दारू पी के चले गए,
4: चले गए,

पहले चलते हैं ताज़ातरीन खबरों की तरफ। यकुम जुलाई बरोज बुध की उर्दू खबरों के साथ मैं हूं रेहान अलवी। हिजब इख्तलाफ के अराकीन ने पार्लियामान ने खबरदार किया है कि लेबर पार्टी की 5% डिपॉजिट की हाउसिंग स्कीम के तहत घर खरीदने वाले ऑस्ट्रेलियन शहरी जल्द ऐसे रिहायशी कर्जों के बोझ तले आ सकते हैं जिनकी मालियत उनके घरों की मौजूदा कीमत से ज़्यादा हो जाएगी। जायदाद की कीमतों के तजजियाती इदारे की नई रिपोर्ट के मुताबिक जून में मुल्क भर में घरों की कीमतों में 0.4% कमी रिकॉर्ड की गई, जो दिसंबर 2022 के बाद सबसे बड़ी माहाना कमी है। रिपोर्ट में महंगाई, शराय सूद और टैक्स पॉलिसी में नई तब्दीलियों को घरों की कीमतों में कमी की बड़ी वजूहात करार दिया गया। वफाकी हुकूमत का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया के साबिक फौजियों के लिए मावनती निज़ाम में कई दहाइयों के बाद सबसे बड़ी असलाहत आज यकुम जुलाई से नाफिजुल अमल हो रही हैं। साबिक फौजियों और उनके खानदानों के फलाह बहबूद के लिए नई एजेंसी ने काम शुरू कर दिया है। वजीर बराए साबिक फौजी उमूर मैट कियोक का कहना है कि इस इदारे का मकसद साबिक फौजियों और उनके अहल खाना को मावनती खिदमात से बेहतर अंदाज में जोड़ना है, जिनमें खुदकशी की रोकथाम, बरवक्त मुदाखलत और फौजी जिंदगी से आम शहरी की जिंदगी में मुंतकली पर खास तवज्जो दी जाएगी। नौजायदा बच्चों के वालदैन अब हुकूमत की जानिब से 6 माह की तनख्वाह समेत पेरेंटल लीव के अहल होंगे। पेरेंटल लीव की हद 24 हफ्तों से बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दी गई है। ये तब्दीली एंथोनी एल्बनीज हुकूमत के मरहलावार तौसी मंसूबे का आखिरी मरहला है, जिसके तहत अब ये मुद्दत 6 माह कर दी गई है। ग्रीन्स पार्टी वफाकी हुकूमत के सोशल मीडिया कवानीन को मजीद वसत देने के लिए मुहिम चला रही है ताकि सोशल मीडिया कंपनियों के तरीक़ेकार को भी कानून के दायरे में लाया जा सके। ग्रीन्स की सेनेटर सारा हैंसन यंग का कहना है कि मौजूदा कवानीन जो 16 साल से कम उम्र बच्चों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट रखने से रोकते हैं, बच्चों और नौजवानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काफ़ी नहीं हैं। ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स पर थाईलैंड में 17 साल लड़की की लाश सूटकेस में मिलने के बाद कत्ल का इल्ज़ाम आयद किया गया है। पुलिस के मुताबिक साहिली शहर पटाया में सनीचर की सुबह रेलवे ट्रैक के करीब फेंके गए एक बैग से लड़की की लाश मिली, जिसे मुबैना तौर पर कत्ल के बाद सूटकेस में रखा गया था। थाई पुलिस का कहना है कि इस वाक़े के सिलसिले में साइमन पीटर कारमेन को बैंकॉक के एयरपोर्ट से उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो मुबैना तौर पर मुल्क से फरार होने की कोशिश कर रहे थे। पाकिस्तानी फ़ौज के शोबे ताल्लुकात आमा का कहना है कि 30 जून को अफगान तालिबान हुकूमत ने बलूचिस्तान में सरहद पार 4 इब्तदाई नौयत के ड्रोन तैयारे भेजे, जिन्हें पाकिस्तानी फिजाई दिफाई निज़ाम ने बरवक्त निशानदही के बाद नाकाम बना दिया। बुध को जारी किए गए बयान में दावा किया गया कि बग़ैर पायलट के ये ड्रोन्स अफगान तालिबान की जानिब से अपने ज़ेर कंट्रोल इलाकों से सरगर्म दहशतगर्द तंजीमों की सरपरस्ती और हिमायत के सिलसिले का हिस्सा थे। अफगानिस्तान ने इन खबरों पर फ़िलहाल तबसरा नहीं किया। वेनेजुएला में आने वाले 2 बड़े जलजलों के नतीजों में हलाकतों की तादाद बढ़कर 1,943 हो गई है, जबकि लागोरा के इलाके में तकरीबन 10,000 अफराद लापता हैं। अमरीकी नुमाइंदे स्टीव वेटकॉक और जैरड कुशनर दोहा पहुंच गए हैं, ताहम ईरानी वफ से उनकी मुलाकात तय नहीं हो सकी। कतर की वजारत खारजा के तर्जुमान के मुताबिक अमरीकी एलची सालिसों से मुलाकात करेंगे, जिसमें मुजाकरात के दौरान होने वाली पेशरफ पर तबादले ख्याल किया जाएगा। ईरानी वजारत खारजा ने भी ईरानी वफ के दोहा जाने की तो तस्दीक की है, ताहम अमरीकी हुक्काम से मुलाकात की तरदीद की है। और अब खेल। आलमी फुटबॉल कप 2026 के नॉकआउट मरहले में फ्रांस ने स्वीडन को शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। न्यूयॉर्क में खेले गए मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया। क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खवातीन टीम ने खवातीन के बैन लक्वामी 2020 आलमी कप के सेमीफाइनल में वेस्ट इंडीज़ को 8 विकेटों से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली। ये थी यकम जुलाई की अब तक की अहम खबरें। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए sbs.com.au/urdu पर जाइए। मैं हूँ रेहान अलवी और आप हैं SBS उर्दू के साथ। जी हाँ, आप SBS उर्दू पर हमारी बराह रास्त नशरियात अगर सुन रहे हैं तो ये सपहर 3 बजे बुध और जुमे को नशर होती है SBS उर्दू की बराह रास्त नशरियात। हर बुध और जुमे को ऑस्ट्रेलियन ईस्टर्न वक्त के मुताबिक सपहर

तीन बजे पॉप देसी बनर्स होती हैं। बुध का प्रोग्राम SBS 2 पर शाम 6 बजे और जुमे का प्रोग्राम SBS 2 पर इतवार को शाम 6 बजे नशरे मुकर्रर के तौर पर पेश किया जाता है। तो ये प्रोग्राम जो आप सुन रहे हैं, अगर आप दोपहर में सुन रहे हैं तो ये बराह रास्त प्रोग्राम है, और अगर आप SBS 2 पर सुन रहे हैं तो ये शाम को आप 6 बजे सुन रहे हैं प्रोग्राम बुध के दिन। और जो लोग इसे दोबारा सुनना चाहें, वो कैचअप करना चाहें, वो हमारे वेब पेज पर भी जा सकते हैं sbs.com.au/urdu पर। और इससे पहले कि कुछ और संजीदा और अहम मौजूआत की तरफ और वक्फों की तरफ हम जाएं, क्यों ना आपकी समातों की नज़र एक सूफ़ी कलाम करें। ये एक मनकबत है जिसे फरहान शाह ने अपनी आवाज़ से सजाया है। वो ऑस्ट्रेलिया के बड़े मारूफ सूफ़ी गुलकारों में शुमार होता है उनका। उन्होंने फिल्मों में भी अपनी गुलकारी का जौहर दिखाया है। आइए सुनते हैं फरहान शाह की यह कव्वाली जो एक मनकबत की शक्ल में है, और ज़िंदगी कितनी हसीन है एक फ़िल्म में इसको पिक्चराइज भी किया गया।

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: रहा है। इसके अलावा जो एम्प्लॉयज की तनख्वाह और सुपर एनुएशन का खर्चा है वो भी काफी बढ़ गया है पहले की निस्बत, और जो दूसरा सबसे बड़ा खर्चा है वो फ्यूल है, बिजली और गैस है, जिनकी कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है, जिसका असर हर बिजनेस पे पड़ रहा है। जो ट्रांसपोर्ट और पोस्टल इंडस्ट्री है, इसमें फ्यूल की जो कॉस्ट है इसका बढ़ने से प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया है। और तीसरा सबसे बड़ा खर्चा जो है वो इंश्योरेंस है, जैसे पब्लिक लायबिलिटी, वर्कर कॉम्पनसेशन और जो गाड़ियों की इंश्योरेंस के प्रीमियम्स हैं वो हर साल बढ़ते जा रहे हैं। गाड़ियों की मेंटेनेंस और रजिस्ट्रेशन और बाकी सर्विस मेंटेनेंस में भी पहले से काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। इसके अलावा हम लोगों को जो है वो अकाउंटिंग फीस, सॉफ्टवेयर, बैंकिंग चार्जेस और उन और बाकी चीज़ों की जो सब्सक्रिप्शन होती है उसमें भी इजाफा हुआ है।
2: इसके अलावा सलमान का ये भी कहना था कि उनका कारोबार वोलोंगोंग के एक रीजनल इलाके में है, जहां पर उन्हें पहले ही काफ़ी ज़्यादा मुआशी मामलात में बाकी कारोबारों की निस्बत ज़्यादा खर्च का सामना है। सलमान ने मज़ीद बताया कि किस तरह से वो अपना कारोबार इन हालात में जारी रखे हुए हैं, जब बजट में भी छोटे कारोबारों के लिए कोई ख़ास बड़े ऐलानात नहीं किए गए।
1: गवर्नमेंट ने कुछ रिलीफ पैकेजेस और रिबेट ज़रूर दिए हैं, मगर लेकिन इनसे इनसे स्मॉल बिजनेस ओनर का ख्याल यह है कि मदद बढ़ती हुई कॉस्ट और बिजनेसेस के मुकाबले में काफ़ी नहीं थी। आज भी बहुत से छोटे कारोबार हैं, उनकी महंगाई और कम प्रॉफिट और बढ़ते हुए जो खर्चे हैं इनकी वजह से बहुत मुश्किलात हो रही हैं। हमारी दरख्वास्त ये है गवर्नमेंट से कि जितने भी छोटे कारोबार हैं उनके लिए कोई कुछ ज़्यादा प्रैक्टिकल सपोर्ट दी जाए, खास तौर पर एनर्जी कॉस्ट, इंश्योरेंस और फ्यूल के रिलीफ में रिलीफ फ्राम की करें।
2: ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का कहना है कि तकरीबन एक तिहाई कारोबारों ने रिपोर्ट किया है कि उनकी आमदनी में कमी आई है, जो इंफॉर्मेशन मीडिया और टेलीकम्युनिकेशन, होलसेल तजारत और रिहाइश और खुराक की खिदमतों के शोबे में सबसे ज़्यादा वाजे थी। मिस्टर ले ने कहा है कि आगे देखते हुए इंफॉर्मेशन मीडिया और टेलीकम्युनिकेशन, इंतजामी मुआवन खिदमात और रिहाइश और खुराक की खिदमात के शोबों में तकरीबन एक तिहाई कारोबार अगले चार हफ्तों में भी आमदनी में कमी की तवक्को रखते हैं। कारोबारी हालात और जज्बात जून 2026 का सर्वे तकरीबन 2700 ऑस्ट्रेलियन कारोबारों को भेजा गया, जिसका डेटा 4 जून से 15 जून 2026 के दरमियान ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने जमा किया है। एबीएस ने बैरूनी स्टेक होल्डर्स के साथ गुज़िश्ता दो महीनों के दौरान मिलकर कारोबारी रवैयों में तब्दीली और ईंधन की फराहमी की गैर यकीनी सूरत हाल पर ऑस्ट्रेलिया के रद्दअमल को समझने के लिए ये डेटा शेयर किया है। ये थी आज की पॉडकास्ट। आप सुन रहे हैं SBS उर्दू और मैं हूं अफनान मलिक।
3: ये तो था जिक्र कारोबारी मसाइल का, और अब ये बात करते हैं टैक्स रिटर्न की। जी हाँ, ये टैक्स रिटर्न का वक्त है और कई लोग पहली बार टैक्स रिटर्न करेंगे। जानते हैं पिछले साल पहली बार टैक्स रिटर्न करने वाले जुनैद ताहिर का तजुर्बा कैसा रहा। टैक्स रिटर्न और हर ऑस्ट्रेलियन टैक्स ऑफिस और टैक्स एजेंट की फराहम करदा मालूम पर मबनी उर्दू पॉडकास्ट हमारी मोबाइल ऐप या हमारे वेब पेज पर माशी उमूर के सेक्शन में मौजूद हैं। आइए सुनते हैं टैक्स रिटर्न के बारे में ये बातचीत। हमारे साथ इस वक्त एक ऐसे टैक्स पेयर मौजूद हैं जिन्होंने शुरुआत की है अपने टैक्स रिटर्न की, और पहला एक्सपीरियंस उनका कैसा गुजरा है इसी बारे में हम उनसे बातचीत कर रहे हैं।
4: जी, मेरा नाम जुनैद ताहिर है और मैं वोलोंगोंग एनएसडब्ल्यू में हूँ।
3: जुनैद, आपने ख्याल में पहली बार पिछले साल अपना फर्स्ट टाइम टैक्स रिटर्न लॉन्च किया था, आपका तजुर्बा कैसा रहा?
4: मैं एक्चुअली माइग्रेट हुआ था नवम्बर 2024 में, यहाँ पे जब मैं पहली दफा आया तो आई हैड टू लॉन्च। मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत अच्छा रहा इस हवाले से टैक्स, क्योंकि जुलाई में फिर आया था लाइक वीज़ा वगैरह ग्रांट जब हुआ तो मैं बोलूँगा जुलाई का जब टाइम आया तो तब मैंने टैक्स लॉन्च किया, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल। इट वाज माय फर्स्ट टाइम, तो मैंने सबसे कुलीग से भी और अपने फ्रेंड से भी, सर्कल में म्यूचुअल फ्रेंड से कॉन्टैक्ट

0: किए और उन्होंने मुझे रजिस्टर्ड और प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स शेयर किए, बिकॉज ये टैक्स फाइलिंग सिस्टम वाज एज आई हैव सेड इट्स न्यू टू मी। प्रोफेशनल एक अकाउंटेंट का जो हमारा एक म्यूचुअल फ्रेंड का ग्रुप है, तो हमने एक ही को हायर किया जिसने सबके टैक्स फाइल किए। तो यस, मैंने हम लोग ने एक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट से करवाया।
1: रिटर्न के दरमियान में आपके लिए सरप्राइज रही हो या आपको पहले से नहीं मालूम थी, कोई चैलेंज था आपके लिए?
0: जी, बिल्कुल सरप्राइजिंग के लिए बिल्कुल ऐसा मुझे फील हुआ कि पहले जब मैं जो नवंबर में, क्योंकि मिड ऑफ द ईयर कंसीडर किया जाता है ये फाइनेंशियल ईयर, तो मेरे लिए सरप्राइजिंग यही था कि मुझे ऐसा लगा कि पूरे जुलाई टू जुलाई जितने भी टैक्स का ब्रैकेट होता है सैलरी का, तो टैक्स डिडक्शन उसमें से होगी। बट एक्चुअली वो प्रो रेटा पे हुई, जो कि नवंबर से ऑनवर्ड्स टिल जून 30 तक उन्होंने उस ब्रैकेट के जितने भी मेरी सैलरी उस हिसाब से उसने डिडक्ट किए। तो इट वॉज रियली सरप्राइजिंग फॉर मी और इट्स अ न्यू लर्निंग फॉर मी एज वेल। सरप्राइजिंग तौर पे तो ये जो पहला तो चीज़ यही थी कि प्रो डाटा के हिसाब से जब टैक्स रिटर्न आया तो उसकी अमाउंट थोड़ी ज़्यादा थी, तो आई वॉज ऑन द क्लाउड 9। इसके अलावा जो एक और चीज़ में मैंने, जब वो टैक्स मेरे जो अकाउंटेंट था एक्सपीरियंस उन्होंने डाला, तो वो मैंने पर्सनल वेरिएबल्स भी देखे उसमें, उसने डिडक्शन की हुई थी। उसने मुझसे पूछा था कि इफ यू हैव हैड परचेज बाय योर सेल्फ, और मतलब ये ऑफिस की सारी स्टफ है आपकी, जो FRC हमारी कहलाती है, फायर रेजिस्टेंट शर्ट्स वगैरह, तो शूज हो गए जिसमें, तो ये सब ये उन्होंने टैक्स डिडक्शन में डाली थी। तो आई थिंक उस वो सारी कैलकुलेशन ATO में होके वो टैक्स रिटर्न देते हैं। तो ये सब चीजें जो है ना, वो एक सरप्राइजिंग और एक लाइक फॉर मी इट्स अ न्यू लर्निंग। तो मैंने ATO से जो ऑब्वियसली यू नीड टू रजिस्टर अंडर माई गव एप्लीकेशन, तो उसमें ATO को लिंक करा, तो उसमें जाके मैंने सारी चीजें देखी। तो उसमें जब मैंने एक मॉनिटर किया, उसमें ऑब्जर्व किया, तो मेरी जितनी भी सैलरी से टैक्स डिडक्ट हो रहा था तो वहाँ पे खुद ही अपडेट हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे ABN और ATO और ये सब चीज़ें वॉज न्यू टू मी, तो मुझे ये सब चीज़ें नहीं पता नहीं। तो उसके बारे में फिर मैंने पढ़ा कि ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर क्या होता है, तो TFN क्या होता है, टैक्स फाइल नंबर, तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये मैंने खुद से पढ़ी थी। तो मैं एक्चुअली TFN पे ही था, तो मुझे पता था कि ABN और इन सब चीज़ों का मुझे आई डोंट नीड टू डील ऑन दिस स्टफ, तो मैंने TFN का ही उनको बताया था, अकाउंटेंट का, तो अकाउंटेंट को ना सब चीज़ों का। तो उसमें इजी होता है कि जो भी TFN में आपकी सैलरी आ रही है उस हिसाब से टैक्स उसमें डिटेक्ट होके आपको रिटर्न आ जाते हैं। और कुछ लोग टैक्स पेइंग कंट्रीज से आते हैं, कुछ नॉन टैक्स पेइंग कंट्रीज से आ रहे हैं। दोनों के लिए मेरे यही एडवाइस है कि आप यहाँ पे प्रोफेशनल अकाउंटेंट हायर करें, बहुत सारी कंपनीज है आउट देयर, यू जस्ट नीड टू रिसर्च, इट्स जस्ट अ क्लिक अवे। आप ये सब चीज़ें जो है वो रिसर्च करें और अपना टैक्स जो है वो कोशिश करें कि उनके थ्रू ही फाइल करवाएं। आप खुद भी मालूम, व्हेन यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस और समथिंग दैट यू आर एक्चुअली इंफॉर्मेटिव ऑफ, तो आप जो है वो खुद फाइल कर सकते हैं। हर चीज़ के लिए आपकी अपनी चीज़ जो भी होती है वो आपने खुद ही मेहनत करनी होती है उसके लिए। तो अगर आपको स्कैम्स और इन सब से, सब चीज़ों से बचना है और हर चीज़ करनी है, तो आपने खुद पहले देखना है कि अगला क्या आपके सिस्टम में आपके बिहाफ पे डाल रहा है। तो आपको खुद डेफिनेटली इन्फॉर्मेशन होती चाहिए। ट्रस्ट, ब्लाइंडली ट्रस्ट आपने किसी पे करना नहीं चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ वायलेशन ऑफ ATO एंड स्टफ, सो यू बेटर नीड टू बी वेरी मीटिकुलस ऑफ इट।
1: जी हाँ, आप जिक्र सुन रहे थे माशी उमूर का। और जब माशी दबाव बढ़ रहा हो और स्ट्रेस दूर करने की ज़रूरत हो, तो मूसीकी से बेहतर और क्या चीज़ हो सकती है? और मूसीकी में भी हमने चुनाव किया है एक ऐसे गीत का जो डॉलर और रुपए पैसे से जुड़ा है। जी हाँ, शायद आप में से बहुत से लोग समझ गए होंगे, आवाज़ अदनान समी खान की है।

0: Hits from Home.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: जी हाँ, आप सुन रहे थे अदनान समी खान की दुआओं की ये फहरिस्त। काफ़ी तवील थी और शायद उन जैसे सेलिब्रिटीज़ गुलकारों के लिए तो इनमें से बहुत सी दुआएं कबूल भी हो गई हों, मगर हम जैसे और आप जैसे लोग शायद इसको गुनगुनाते ही रहें तो शायद कभी इसमें से एक आध कबूलियत की दुआ हमारे लिए भी निकल आए। इस दुआ को यहीं पर छोड़ते हैं और कबूलियत की उम्मीद पर ही मौसीकी से वक्फ़ा ले रहे हैं। वक्फे के बाद जिक्र रहेगा SBS ऑन डिमांड पर मौजूद फिल्मों, डॉक्यूमेंट्रीज और ड्रामों का।
5: अपने फोन पर प्रोग्राम्स और पॉडकास्ट सुनने का बेहतरीन जरिया SBS ऑडियो ऐप है। एप्पल स्टोर या गूगल प्ले से SBS ऑडियो ऐप मुफ्त डाउनलोड कीजिए। इनसाइड SBS का हालात हज़रा का अवार्ड याफ्ता शो उन जरूरतमंदाना मौजूआत को जेर बहस लाता है जिस पर कोई और बात नहीं करता। देखिए SBS पर इनसाइड मंगल 8:30 बजे या किसी भी वक्त SBS ऑन डिमांड पर। अवार्ड याफ्ता आलमी ड्रामे, खेल और डॉक्यूमेंट्रीज, ये सब कुछ SBS TV पर चैनल 30, SBS वाइसलैंड या चैनल 31 पर देखिए। दुनिया भर से कशीद की हुई अहम कौमी और आलमी खबरें तफसील से सुनिए मोबाइल ऐप या sbs.com.au/news/audio पर।
6: Launch season 4, the Arctic.
7: 10 brave souls, far from home, close to freezing.
8: It's a whole new frontier.
9: Oh my God!
7: Alone Australia streams 15th of July on SBS On Demand.
10: SBS ऑडियो ऐप आज ही डाउनलोड कीजिए और अपने पसंदीदा तमाम प्रोग्राम सुनिए। गूगल प्ले या ऐप स्टोर से SBS ऑडियो ऐप मुफ्त हासिल करें।
4: आप हैं रेहान अलवी के साथ और नशियात हैं SBS उर्दू की। आपको एक बात ये भी बताते चलें कि SBS उर्दू का इंस्टाग्राम पेज भी काफ़ी मुतहरिक है और उस पर बहुत सी वीडियोस ऐसी हैं जिनकी जिनको देखने वालों की तादाद लाखों में है और इंस्टाग्राम के ऊपर। और अगर आप हमारे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर जाएंगे तो आपको रील्स मिलेंगी वहाँ पर जो बहुत ही मुख्तसर होती हैं और इन रील्स की रीच बहुत ज़्यादा है। और हमने हाल ही फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से लियारी में होने वाली सरगर्मियों के हवाले से वीडियो पोस्ट की हैं। इसके अलावा यहाँ ऑस्ट्रेलिया में जो कुछ होता रहता है उसके बारे में भी हम वहाँ पे पोस्टिंग करते हैं, छोटी छोटी रील्स बनाते हैं आपके लिए। मीरा की अभी जो फिल्म आई थी साइको, उसके हवाले से मीरा का इंटरव्यू भी वहाँ मौजूद है। और आने वाले दिनों में आप अदाकार, मारूफ अदाकार फैसल कुरैशी का इंटरव्यू भी वहाँ पर देख सकेंगे, बातचीत देख सकेंगे। और इस तरह के सेगमेंट्स और बुशरा अंसारी और नुमान एजाज जब यहाँ आए थे उनसे हमने बातचीत की थी, वो उनका इंटरव्यू क्लिप भी मौजूद है और उनकी पॉडकास्ट भी हमारे वेब पेजेस पर मौजूद रहते हैं। और अगर आप फेसबुक की बात करें तो फेसबुक पर जो ट्रेंड कर रही हैं स्टोरीज़ उनमें सलमान बट, जी हाँ, पाकिस्तान के क्रिकेट के साबिक कप्तान ने पाकिस्तानी क्रिकेट के बड़े मसाइल में फिटनेस, तसलसल के फुकदान और पॉलिसियों की कमज़ोरियों की निशानदेही की है, वो काफ़ी लोगों में मकबूल रहा है। इसके अलावा जो सेगमेंट आज आपने सुने उनमें से भी कई हमारे फेसबुक पेज पर मौजूद हैं जिनमें माशी उमूर और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के हवाले से स्टोरीज़ भी मौजूद हैं। पाकिस्तान रिपोर्ट हम आपके लिए हर फोर्टनाइटली लेकर आते हैं, उसमें खातून डंपर चलाने वाली खातून ड्राइवर की बातचीत है, टैक्स रिटर्न के हवाले से हमारी पोस्ट है और इसके अलावा भी बहुत सारी हमारी पोस्ट आप SBS उर्दू के फेसबुक पेज पर देख सकते हैं। अब आइए चलते हैं ऑस्ट्रेलिया ऑन डिमांड की तरफ। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया ऑन डिमांड के सिलसिले में हम हर सहमाई में कुछ ना कुछ आपको ज़रूर बताते हैं जो हमारे ऑडियंस के लिए दिलचस्पी की चीज़ें होती हैं। और उन्हीं में आज हम आपको बहुत सी ऐसी कंटेंट और फीचर्स और ड्रामों और फिल्मों के बारे में बताएंगे जो एस

0: एस ऑन डिमांड पर बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। जी हाँ, और ये बहुत दिलचस्प हैं, मालूमाती हैं, और इसमें उर्दू हिंदी ज़बान से वाकफियत रखने वालों के लिए बॉलीवुड सिनेमा का लुत्फ भी है। बहुत सी गैर मुल्की फिल्में कई ज़बानों में सब टाइटलिंग के साथ भी मौजूद हैं। आइए सुनते हैं इस सहमाई में SBS ऑन डिमांड पर क्या कुछ है।
1: ये SBS उर्दू है, SBS साउथ एशियन पर।
2: SBS On Demand एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप दुनिया भर का आर्ट देख सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर बॉलीवुड की हिंदी और पंजाबी फिल्मों के अलावा पाकिस्तानी फिल्में भी मौजूद हैं, और उर्दू और हिंदी जबान से वाकफियत रखने वालों के लिए बॉलीवुड सिनेमा का लुत्फ भी उठाया जा सकता है। इस सहमाई में जहां SBS On Demand पर फिल्में और ड्रामे शायकीन को लुत्फ अंदोज करने के लिए मौजूद हैं, उनमें री मार्टिन की द लास्ट गुड बॉय समेत कुछ अंग्रेजी फिल्में और सीरीज भी हैं जो आपकी दिलचस्पी का बायस हो सकती हैं। नागदीन की जानिब से सराही गई फिल्में हों, अंग्रेजी क्राइम थ्रिलर्स हों,
0: ये सब आपको SBS
2: नागदीन की जानिब से सराही गई फिल्में हों अंग्रेजी
0: माफ़ कीजिएगा सामाइन, इसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज़ आ रहे हैं जिसके बायस हम ये पॉजेज इसमें हो रहे हैं, तो हम इसको यहीं पे रोक रहे हैं और इसका दूसरा वर्जन हम आपको थोड़ी देर में सुनवाएंगे। इतनी देर में हम आपको लिए चलते हैं गीत और मौसीकी की दुनिया में। नुसरत फ़तेह अली ख़ान की आवाज़ में सुनवाते हैं आपको ये मारूफ़ गज़ल।

0: रहे थे नुसरत फ़तेह अली ख़ान की आवाज़ में ये गज़ल। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कि अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के अहम सालिस पाकिस्तान को शुक्रिया और तारीफ़ के अलावा क्या मिलेगा। इस सिलसिले में हमारे कॉन्ट्रीब्यूटर असगर हयात ने बातचीत की है मारूफ पाकिस्तानी एंकर मखदूम शहाबुद्दीन से, वही आपको सुनवाते हैं।
1: SBS उर्दू SBS साउथ एशियन पर।
0: ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत होने तक बड़े नशीब व फराज आते रहे। इन तमाम मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने एक सालिस के तौर पर अहम किरदार अदा किया। इस बारे में इस्लामाबाद में मुकीम हमारे नुमाइंदे असगर हयात ने मारूफ एंकर और सहाफी मखदूम शहाबुद्दीन से बात की है, आइए आपको सुनवाते हैं।
2: अगर पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी का किरदार अदा करे तो इसकी कलील मदत में दाखिली और खारजी अमूर पर क्या असरात मरतब होंगे और तवील मदत में इसके क्या मुमकिन असरात हो सकते हैं?
3: आई पर्सनली थिंक कि पाकिस्तान के लिए कोई पिछले 76 साल में कोई एक साल का पैच इतना गेम चेंजर नहीं रहा जो पाकिस्तान ने मई 2025 से मई 2026 के दरमियान अचीव किया। पाकिस्तान की तीन बड़ी अचीवमेंट्स रही। नंबर वन, हमने अपने से कई बड़ा मुल्क है इंडिया, ऑन पेपर्स दिफाई बजट ज़्यादा है, फौज ज़्यादा है, राफेल भी है, सब कुछ है। जंग हमने शुरू नहीं की, हमने इंडिया के साथ जंग लड़ी, हमने जंग जीती, हमने एस्केलेशन लैडर कंट्रोल किया, हमने जंग को उस लेवल पे नहीं ले गए कि वो आउट ऑफ कंट्रोल चला जाए। तो पाकिस्तान ने ये बता दिया कि भाई हम एक स्ट्रॉन्ग मुल्क तो हैं लेकिन हम एस्केलेशन लैडर कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर वन, ईरान अमेरिका जंग तो वो थी, इससे दुनिया का एक शख्स आप मुझे बता दें जो इम्पैक्ट ना हुआ। तेल की कीमतें बढ़ी, इन्फ्लेशन बढ़ी, हर शख्स पे इसका फ़र्क पड़ा। तो पाकिस्तान ने वो जंग रुकवा दी है अब जो कि पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ली हुई थी। जो बड़े बड़े तगड़े मुल्क काम नहीं कर सकते थे वो पाकिस्तान की तरफ नजरें लगाए हुए बैठे हुए थे और रोज हमारे फॉरेन मिनिस्टर को कॉल आती थी, हाँ जी की बढ़े हैं। इसी तरह से अगर हम देखें तो पाकिस्तान ने वो काम किया जो यूएन का था लेकिन हमने वो कर दिया। हमने पीस के लिए अपना रोल जो है वो प्ले किया, हमने पीस के लिए अपने एफर्ट्स किए। और इस सारे सिनेरियो को अगर हम ऑब्जर्व करें, हम एनालाइज करें तो चीज़ें जो हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग भी हैं कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पर एक मकाम और मर्तबा बन गया। पाकिस्तान का इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक अब ये जो पोजीशन है पाकिस्तान की, इसे पाकिस्तान को अपने अवाम की बेहतरी के लिए यूज़ करना होगा। डोमेस्टिक सतह पर पाकिस्तान के लिए बहुत से चैलेंजेस हैं और मुझे लगता है कि उन चैलेंजेस से भी निबर्दाजमा होने के लिए पाकिस्तान जो है उसे इस अपनी यूनिक इंटरनेशनल पोजीशन को यूज़ करना चाहिए। तो पाकिस्तान ईरान के साथ सबसे पहले तो तेल लेना शुरू कर देगा जेनुअन तरीके से, पहले स्मगल होता था उसे भी रोकने की कोशिश की गई। सेकेंडली, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन है, फौरी तौर पर ईरान के एंड से कम्प्लीट है, हम यहाँ से कम्प्लीट कर सकते हैं। ईरान के साथ बहुत बड़ी इकोनॉमिक डील्स साइन हो सकती हैं। फिर सेकेंडली, गल्फ में जो इस दफा हुआ है अरब स्टेट्स के साथ जो हुआ है, तो अब पूरी दुनिया को समझ लग गई है कि सिर्फ पोर्ट्स होना काफ़ी नहीं है, तगड़ा मुल्क भी होना चाहिए। तो अब गवादर एक अल्टरनेट के तौर पर उभर कर सामने आया है क्योंकि हमारे पोर्ट सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन नहीं प्रोवाइड करते, वी आर अ न्यूक्लियर स्टेट, एक स्टेट जो इंडिया के मुकाबले में अपनी डेटरेंस एस्टैब्लिश कर चुका है। आप ये देखें इस पूरे तनाज़े में कौन सा एक मुल्क है जो अब नाए हुरमत से आसानी से गुजरता था, जिसे अमेरिका भी कुछ नहीं कहता, ईरान भी कुछ नहीं कहता, वरना जिसे अमेरिका जाने देता था ईरान उसको पकड़ लेता था, जिसे ईरान जाने देता था अमेरिका उसके ऊपर बॉम्ब मार देता था। समुंदर में पाकिस्तान नेवी ने ऑपरेशन मुहाफिजुल बहर लॉन्च किया, हम अपनी सारी वेसल्स को एस्कॉर्ट करके लाते रहे। तो पाकिस्तान ने अनइमेजिनेबल काम किया और

0: पाकिस्तान के लिए शॉर्ट टर्म तो ये फायदा है कि हम फौरी तौर पर इसके फवायद हासिल कर सकते हैं, गवादर, इसके अलावा ईरान के साथ डील्स, और अब पूरी दुनिया की नजरें हम पर हैं, तो इस अपॉर्चुनिटी को यूज करना है।
1: दूसरा सवाल इसी से मुतालिक है कि क्या इस सालिसी के नतीजे में आम पाकिस्तानी को, पाकिस्तानी आवाम को कोई हकीकी माशी या समाजी फ़ायदा पहुँचेगा, या ये ज़्यादातर सिर्फ एक सफारती और खारजी पॉलिसी की कामयाबी तसव्वुर की जाए?
0: देखिए, सफारती तो बहुत बड़ी कामयाबी है ये, लेकिन इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा, जिस तरह से मैंने भी आपको अभी बताया कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान जो है उसे बहुत से फवायद मिलेंगे। पाकिस्तान एक तो सऊदीया के साथ हमारा SMDA साइन हो गया, कतर इंटरेस्टेड है, टर्की इंटरेस्टेड है, इजिप्ट इंटरेस्टेड है, अरब जो है वो पाकिस्तान को एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर देख रहे हैं। पोस्ट मार्का हद पाकिस्तान के JF-17 थंडर में लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, तो डिफेंस एक्सपोर्ट से आप अपनी इकॉनमी बेहतर बना रहे हैं। इस जंग में अरब्स को समझ लग गई कि सिर्फ अमेरिका पे निसार नहीं कर सकते हम, अमेरिका के बेस होना सिक्योरिटी की जमानत नहीं है बल्कि उल्टा लाइबिलिटी है, तो टेक्निकल लेवल पे मैन पावर एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होगी। तो पाकिस्तानी जो पहले ही आपको पता है कि पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क मुकीम है वो पाकिस्तान को चला रहे हैं, रेमिटेंस भेजते हैं, तो ईरान में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हमें मिलेंगी, और उसमें भी ऑब्वियसली उनकी पहली प्रेफरेंस जो है वो पाकिस्तानी होगा। अच्छा, तो इसके बहुत से फायदे होने जा रहे हैं।
1: और इस किरदार का पाकिस्तान के अफगानिस्तान और भारत जैसे हमसाय ममालिक के ताल्लुकात और खित्ते में इसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर क्या असर पड़ सकते हैं? क्या मुत्तहिदा अरब अमीरात के साथ ताल्लुकात भी बहाल हो सकते हैं?
0: UAE के साथ तो पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो पहले से ही बड़े अच्छे रहे हैं, और कोई उतार चढ़ाव छोटी मोटी चीज़ें होती हैं उनसे ताल्लुकात ख़राब नहीं होते। हम रावलपिंडी में फ्यू आवर्स अगो वी हैड अ मीटिंग विद अ वेरी सीनियर सिक्योरिटी सोर्स, तो उन्होंने कहा कि UAE के हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है। और इसके अलावा इंडिया और अफगानिस्तान की अगर आप बात कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि इंडिया के हवाले से अमरीका ने इंडो पैसिफिक रीजन को सिर्फ पैसिफिक रीजन डिक्लेयर कर दिया, क्वाड ख़त्म हो गया, इंडिया इररेलेवेंट होता जा रहा है। पाकिस्तान के लिए बहुत से मौके हैं, पाकिस्तान उनसे फ़ायदा उठाएगा, और अफगानिस्तान वाले मामले पर भी पाकिस्तान की ये पॉलिसी है कि हम बातचीत से मसला हल करना चाहते हैं, लेकिन अगर वो एक्शन नहीं ले रहे और हमारे लोग मर रहे हैं तो हम प्रिसाइज एयर स्ट्राइक्स करके टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को खुद तबाह कर देते हैं। सो पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि वो दुनिया को समझा सकता है कि दीज आर आर कंसर्न्स और हम ये अपना मसला हल कर रहे हैं।
1: फील्ड मार्शल और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मौजूदा हनीमून कितना पायदार है, और क्या पाकिस्तान पोस्ट ट्रंप दौर के लिए भी तैयार है?
0: देखिए एग्जैक्टली अमेरिका जो है उसमें पोस्ट ट्रंप तो अभी सिनेरियो को अभी नहीं, आप उसी वक्त का सोच रहे होते हैं, अमेरिका में कुछ बदलते देर नहीं लगती, इससे पहले बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थी। पाकिस्तान ने टेक्निकली ट्रंप को फेवर नहीं दी, पाकिस्तान ने अमेरिका को फेवर दिया। इस जंग से अमेरिका बहादुर अगर निकल रहा है, वो ऑफ रैंप पाकिस्तान ने प्रोवाइड किया है। डोनाल्ड ट्रंप एक इंतहाई अनप्रडिक्टेबल शख्सियत है, तो ऐसी शख्सियत जो कि किसी को नहीं बख्शती। मैं तो इसी बात पे हैरान हूँ कि वो यूँ लगता है कभी कभी कि वो फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर के PR मैनेजर हैं, उन्होंने तारीफ का ठेका उठाया हुआ डोनाल्ड ट्रंप ने। तो आज तक मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अलावा किसी और शख्स की इतनी तारीफ नहीं की जो उनकी की है। और आई गेस के पाकिस्तान बड़ा केयरफुली नेविगेट कर रहा है, ये वाली यूनिक डिप्लोमेटिक पोजिशन इंजॉय कर रहा हूँ, तो ये बड़ा मुश्किल होता है कि सबसे आप बना के चले और सबके लिए काबिल कबूल नहीं बल्कि सब आपकी इज्जत कर रहे हो, तो पाकिस्तान ने बड़ा मुश्किल से ये अचीव किया और अनइमेजिनेबल था।
2: ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के दौरान क्या कुछ हुआ और पाकिस्तान का इसमें क्या किरदार रहा, और अब पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, इस मौजू पर अभी आपने मारूफ पाकिस्तानी एंकर और सहाफी मखदूम शहाबुद्दीन के ख्याल सुने, जिनसे बातचीत कर रहे थे इस्लामाबाद में मुकीम हमारे नामानिगार असगर हयात।
3: SBS उर्दू SBS साउथ एशियन पर,
4: और इसमें से बहुत से सेगमेंट ऐसे भी हमने आज के प्रोग्राम में भी शामिल किए और आइंदा भी शामिल करते हैं, जिनकी वीडियोस भी हमारे फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पेज पे और यूट्यूब पे पर आप देख सकते हैं। अब प्रोग्राम बिल्कुल अपने अख्ताम की तरफ है, आपको ये याद दिला दें कि यही प्रोग्राम बुध की शाम को 6 बजे भी आप सुन सकेंगे SBS 2 पर, और इसके अलावा जुमे का प्रोग्राम भी शाम को 6 बजे दोबारा नशर मुकर्रर होता है। यहीं पर अपने आज के मेज़बान रेहान अरबी को इजाज़त दीजिए, इस दुआ के साथ फिर मिलेंगे दर खुदा लाया, अल्लाह निगेबान।
5: SBS, a world of difference. You're with SBS Punjabi on mobile, online and on radio.
6: To see SBS Punjabi naal mobile, online

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online, and on radio.
1: आप सुन रहे हैं SBS Hindi मोबाइल, ऑनलाइन और रेडियो पर.
2: SBS Hindi पर आपका बहुत बहुत स्वागत है. एक नई शाम, एक नया दिन और एक नया शो. शो शुरू करने से पहले हम इस धरती के पूर्वजों और कुलीन राज के वुरुंजुरी और वुईवुरुंग लोगों को और उनके बुजुर्गों को सम्मान के साथ प्रणाम करते हैं. हम उन सभी टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर भूमि के पारंपरिक मालिकों को भी आदरपूर्वक याद करते हैं जिनकी भूमि पर ये कार्यक्रम सुना जा रहा है. मैं हूं नबील और आज के शो की शुरुआत करते हैं. सबसे पहली जो हमारी रिपोर्ट आने वाली है उसके बारे में आपको बता दूं. एक बड़ा अपडेट है. कई हफ्तों की बहस और बदलावों के बाद कैपिटल गेन्स टैक्स और नेगेटिव गियरिंग जैसे बड़े टैक्स रिफॉर्म्स वाला बिल अब कानून बन चुका है. इस बिल में क्या बदलाव हुए हैं और इसका क्या असर पड़ सकता है आपकी जेब पर, इस पर डिटेल में बात होगी. इस पर एक रिपोर्ट हमने तैयार की है. उसके बाद आपके लिए लेकर आएंगे इंडिया रिपोर्ट जिसमें होती हैं भारत की कुछ खास खबरें और फिर हम सुनेंगे मेलबर्न में बसे इंडियन माइग्रेंट्स की प्रेरणादायक कहानियां जो संघर्ष से आगे बढ़कर सेल्फ डिस्कवरी और बदलाव की यात्रा दिखाती हैं. इस बातचीत में पहले हम जुड़ेंगे लेखक दिवेश सरीन और सन्यासी अर्जुन साखा दास से और फिर आगे जतिन कोटेचा से भी बात होगी जो खुद को एक डेलिबरेट एडवेंचरर बताते हैं और अपनी अनोखी यात्रा के अनुभव हमारे साथ साझा करेंगे. और ये रिपोर्ट आपके लिए दो भाग में हम प्रस्तुत करेंगे और जाहिर सी बात है इसके बीच बीच हम आपके लिए गाने भी प्ले करते रहेंगे. और हमारा फ़ोन नंबर 04397997667 है. अगर आप कोई भी संदेश भेजना चाहते हैं तो अपने नाम के साथ ज़रूर मैसेज करिए और हम इसको ऑन एयर पढ़ेंगे. 04397997667. तो ये सारी रिपोर्ट्स आएंगी, गाने भी आएंगे. शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सुन लेते हैं आज का न्यूज़ फ्लैश. बुधवार 1 जुलाई की खास खबरों के साथ मैं हूं नबील हसन. VFS ग्लोबल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी जानकारी के अनुसार हाई कमीशन ऑफ इंडिया इन कैनबरा के निर्देशों के तहत ऑस्ट्रेलिया में काउंसलर, पासपोर्ट और वीज़ा यानी CPV सेवाएं 1 जुलाई 2026 से अगले आदेश तक अस्थायी रूप से बंद रहेंगी. इस दौरान एप्लीकेंट्स की मदद के लिए VFS ग्लोबल ने कस्टमर सपोर्ट की जानकारी जारी की है. आप 03-9956-3830 पर सुबह 9 बजे से दोपहर 3:30 बजे और

0: ऑस्ट्रेलियन ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार तक कॉल सेंटर से संपर्क कर सकते हैं, जबकि ईमेल इंक्वायरीज info.ind_aus@vfshelpline.com पर भेजी जा सकती हैं। एमरजेंसी कॉन्सुलर असिस्टेंस के लिए एप्लीकेंट्स को हाई कमीशन ऑफ इंडिया इन कैनबरा की ऑफिशियल वेबसाइट देखने की सलाह दी गई है। जो पासपोर्ट्स कलेक्शन के लिए रेडी हैं, उन्हें पहले की तरह ही प्रोसेस के अनुसार जारी किया जाएगा, जबकि जिन एप्लीकेशंस पर काम चल रहा है वो सर्विसेज बहाल होने तक पेंडिंग रहेंगे। कॉलिशन एमपीज ने चेतावनी दी है कि जिन ऑस्ट्रेलियाई लोगों ने लेबर की 5% डिपॉजिट स्कीम के तहत घर खरीदे हैं, उनके मॉर्गेजेस जल्द ही उनके घरों की कीमत से ज्यादा हो सकते हैं। कोटैलिटी, जिसे पहले कोर लॉजिक के नाम से जाना जाता था, उसकी एक नई रिपोर्ट के अनुसार जून में देश भर में घरों की वैल्यूज 0.4% गिर गई है, जो दिसंबर 2022 के बाद सबसे बड़ी मासिक गिरावट है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग प्रेशर्स, इंटरेस्ट रेट्स और टैक्स पॉलिसी में नए बदलाव इस गिरावट के मुख्य कारण हैं। शैडो असिस्टेंट मिनिस्टर फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर बेन स्मॉल ने कहा है कि एल्बनीजी सरकार द्वारा माइग्रेशन लेवल्स को सही तरीके से मैनेज ना करने की वजह से प्रॉपर्टी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। आज यानी 1 जुलाई से जन्मे या फिर गोद लिए गए बच्चों के माता पिता अब सरकारी पेड पेरेंटल लीव के तहत 6 महीने की छुट्टी के लिए पात्र होंगे। ये योजना पहले 24 हफ्तों की थी, जिसे बढ़ाकर 26 हफ्ते यानी लगभग 6 महीने कर दिया गया है। ये बदलाव एल्बनीजी सरकार की फेज्ड एक्सपेंशन का अंतिम चरण है, जिसके तहत पेड पेरेंटल लीव को 2023 में 20 हफ्ते, 2024 में 22 हफ्ते, पिछले वर्ष 24 हफ्ते और अब 6 महीने तक बढ़ा दिया गया है। जो माता पिता इसके लिए पात्र हैं, उन्हें छुट्टी के दौरान नेशनल मिनिमम वेज के बराबर पेमेंट मिलेगा। सरकार का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य परिवारों को बच्चे के पहले साल में अधिक समय साथ देना और वर्क लाइफ बैलेंस को बेहतर बनाना है। इसके अलावा आज से मिनिमम वेज भी बढ़ाकर $26.44 प्रति घंटा कर दिया गया है, जो 38 घंटे के वर्किंग वीक के आधार पर टैक्स से पहले $1,004.90 प्रति सप्ताह के बराबर है। ग्रीन्स पार्टी फेडरल सरकार की सोशल मीडिया लॉस को और एक्सपैंड करने की मांग कर रही है, ताकि सोशल मीडिया कंपनीज के एल्गोरिथम्स को भी इसके दायरे में लाया जा सके। ग्रीन सेनेटर सारा हैंसन यंग का कहना है कि मौजूदा कानून, जिनमें 16 साल से कम उम्र के बच्चों को अपना अकाउंट रखने से रोका गया है, बच्चों और टीनेजर्स की सुरक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है। एल्बनीजी सरकार ने संकेत दिया है कि वो अपने वर्ल्ड फर्स्ट सोशल मीडिया लॉस को और सख्त कर सकती है, क्योंकि एक हालिया रिपोर्ट में पाया गया है कि कई अंडर एज यूजर्स इन रिस्ट्रिक्शंस को बाईपास कर रहे हैं। सारा हैंसन यंग का कहना है कि प्रस्तावित उपाय, जिनमें नियम तोड़ने पर कंपनियों पर जुर्माना बढ़ाना भी शामिल है, इस समस्या का समाधान नहीं करेंगे। वेनेजुएला में आए ट्विन अर्थक्वेक से हुई मौतों का आंकड़ा बढ़कर कम से कम 1,943 हो गया है, जबकि ला गुएरा में करीब 10,000 लोग अभी भी लापता हैं। ला गुएरा के 2 कस्बों में भूकंप के समय लगभग 30,000 लोगों के मौजूद होने का अनुमान था, जिनमें से करीब 10,000 लोगों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। भूकंप आए लगभग 1 हफ्ते बीत जाने के बाद मलबे में दबे लोगों के जीवित मिलने की उम्मीद अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। और अब खबर भारत से। भारत की राजधानी दिल्ली में सरकार ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026 को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य प्रदूषण कम करना और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत दिल्ली में अगले कुछ वर्षों में हजारों चार्जिंग पॉइंट्स लगाने की तैयारी है और 1 अप्रैल 2028 से नए पेट्रोल और CNG टू व्हीलर्स का रजिस्ट्रेशन बंद करने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वालों को इंसेंटिव्स दिए जाएंगे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ डिलीवरी व्हीकल्स को भी धीरे धीरे इलेक्ट्रिक में बदलने की योजना है। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक दिल्ली में कम से कम 30% वाहन इलेक्ट्रिक हों। ये था आज का न्यूज फ्लैश नबील हसन के साथ। अन्य खबरों और जानकारी के लिए बने रहिए SBS हिंदी पर। हमारी वेबसाइट है sbs.com.au/hindi। SBS हिंदी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं नबील और अब आगे बढ़ते हैं और अपने शो की पहली रिपोर्ट की तरफ चलते हैं। कई हफ्तों की बहस और बदलावों के बाद कैपिटल गेन्स टैक्स और नेगेटिव गियरिंग समेत टैक्स से जुड़े कई बड़े बदलावों वाला बिल अब कानून बन गया है। इस बिल में क्या क्या है और कौन कौन इससे प्रभावित हो रहा है, इसी पर विस्तार से एक रिपोर्ट लेकर आ रही हैं स्वाति शर्मा।
1: आप सुन रहे हैं
0: मनी मैटर्स।
1: अब फाइनेंस की जानकारी आसान भाषा में।
2: नमस्कार, SBS हिंदी पर मैं हूँ स्वाति शर्मा। लंबे समय से चर्चा में और खबरों में छाया हुआ टैक्स रिफॉर्म बिल 25 जून को संसद में पास हो गया, जिसने मई के बजट में हुई कई बड़ी घोषणाओं को अब कानून बना दिया है। यह बिल सरकार और ग्रीन्स के बीच एक समझौते के बाद पास हुआ। इसमें कैपिटल गेन्स टैक्स, नेगेटिव गेयरिंग और इनकम टैक्स को लेकर बड़े बदलाव शामिल हैं और इनका असर खास तौर पर प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स और नौकरी पेशा लोगों पर पड़ेगा। आज हम समझेंगे कि इस बिल में क्या क्या है और आपके लिए इसका क्या मतलब है। हमारे साथ इस बारे में बात करने के लिए हैं नितिन सैबी, जो टैक्स सर्जन के नाम से मशहूर हैं और 15 साल से अधिक समय तक ATO में टैक्स एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम कर चुके हैं। नितिन, बहुत बहुत स्वागत है आपका SBS हिंदी पर।
3: नमस्कार स्वाति जी, नमस्कार सभी श्रोताओं को।
2: सबसे पहले बात कैपिटल गेन्स टैक्स की, यानी CGT की। अगर अभी आप जैसे कोई एसेट या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदते हैं और एक साल से ज्यादा रखने के बाद बेचते हैं, तो मुनाफे पर आपको 50% की CGT डिस्काउंट मिलती थी। तो नए कानून के तहत 1 जुलाई 2027 से क्या बदल रहा है और इन्वेस्टर्स के लिए इस बदलाव का असल में मतलब क्या है?
3: आई थिंक ये काफी सिग्निफिकेंट टैक्स रिफॉर्म हुआ जी। और इसमें क्या है कि कैपिटल गेन टैक्स डिस्काउंट जो है 1 जुलाई 2027 से 50% जो आपका CGT डिस्काउंट है वो फिनिश हो गया, और उसके रिप्लेसमेंट में इन्होंने रूल पास किया है कि कॉस्ट बेस्ड इंडेक्सेशन आप अप्लाई करोगे फ्रॉम 1st जुलाई 2027। और उसके साथ ये भी जानना जरूरी है कि 1st ऑफ जुलाई 2027 से आपके कोई भी नेट कैपिटल गेन्स होंगे उस पे आपको 30% मिनिमम टैक्स देना पड़ेगा। और ये सिर्फ नेट कैपिटल गेन्स प्रॉपर्टी के साथ रिलेटेड नहीं है, चाहे आपके शेयर्स हैं, चाहे आपके EFTs हैं, चाहे आपकी क्रिप्टो करेंसी है। तो ये सारों पे इम्पैक्ट हुआ है। और ये किन किन पे लोगों पे इम्पैक्ट होगा, जैसे कि इंडिविजुअल्स हैं जो इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में हो जाए या प्रॉपर्टी में हो जाए, ट्रस्ट भी हैं, पार्टनरशिप्स भी हैं वो भी इन्वेस्ट करते हैं, और इवन कंपनीज एंड सुपर फंड्स भी इस ट्रीटमेंट में आ गए। और सबसे पहली बार ये हुआ है जो श्रोताओं को आई थिंक सरप्राइज लगेगा कि अगर आपने प्री 1985 से पहले अगर आपने कोई भी एसेट लिया हुआ है, अब पहले होता था कि प्री 1985 से पहले जब आपने एसेट लिया है तो अगर आप एसेट बेचते थे तो आपको टैक्स फ्री होता था, उस पर कोई भी CGT नहीं लगता था, इवन 50% भी। अब इन्होंने क्या बोला है कि वो सारे ऐसे जो अगर आपने रखे हुए हैं प्री 1985 उन पे भी अगर आप 1 जुलाई के बाद सेल करोगे तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा।
2: जी, तो मैं बात एक और ऐसे ही अहम टॉपिक की जो इस रिफॉर्म बिल्स में रहा है उसकी करना चाहूंगी, नेगेटिव गेयरिंग। नेगेटिव गेयरिंग श्रोताओं के लिए बता दें कि वो स्थिति है जब आप किसी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पर होने वाला खर्च उससे मिलने वाला किराए या उससे मिलने वाली आमदनी से ज़्यादा होता है, तो उस घाटे को आप अपनी सैलरी जैसे दूसरी आमदनी से घटाकर कम टैक्स दे सकते हैं। तो नितिन, अगर आप इसमें हुए बदलावों को आसान भाषा में समझा सकें कि जो लोग मौजूदा प्रॉपर्टी ओनर्स हैं उनको किन बातों का ध्यान रखना होगा, उनके लिए ये कितना मायने रखता है?
3: तो आई थिंक ये बदलाव बहुत ही इम्पोर्टेंट है जी। जो मैं बोलूं हाई इनकम अर्नर्स थे, जो आपके एम्प्लॉयज थे, जो काफी जैसे मेडिकल प्रोफेशंस हैं जहाँ जिनकी इनकम 2 लाख से ज्यादा होती थी या 1.5 लाख से ज्यादा भी होती थी, तो वो कोशिश करते थे कि हम अपने इनकम टैक्स को कम कर पाए एक प्रॉपर्टी लेके, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेके, जिससे कि नेगेटिव गेयरिंग हो। अगर आपकी प्रॉपर्टी कैश फ्लो लॉस पे है तो आप ऑफसेट कर सकते हो अपनी बाकी इनकम से, जिससे आपका बेसिकली उनका मेन ये होता था इंसेंटिव कि भाई फ्यूचर में हमें कैपिटल ग्रोथ मिलेगी इस प्रॉपर्टी को बेच के, और साथ साथ में हमारा इनकम टैक्स भी कम होता जाएगा। अब गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई नेगेटिव गियरिंग जो आपकी है एस्टेब्लिश प्रॉपर्टीज पे वो आप नहीं ले सकते, सिर्फ आप ले सकते हो एक नई प्रॉपर्टी को। अब न्यू रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन भी डिफरेंट डिफरेंट तरह की है, वो मैं अभी डिटेल में टेक्निकली नहीं जाऊंगा, पर कहने का मोटा मोटा मतलब ये है कि अगर आपने ऑफ प्लान कोई चीज ली है या नया घर लिया है उस पर नेगेटिव गियरिंग ठीक है आपको मिलेगी, अगर आपने एस्टेब्लिश कर लिया है उस पर नेगेटिव गेयरिंग उन्होंने बंद कर दी है।
2: तो ये तो हुई प्रॉपर्टी ओनर्स और

0: इन्वेस्टर्स की बात, अब कुछ राहत की बात उनके लिए जो नौकरी करते हैं। इस बिल में दो चीज़ें तय हुई हैं नौकरी पेशा लोगों के लिए, तो नितिन उनके लिए ये दोनों रिलीफ्स किस तरह उन पर अप्लाई होंगी और उन्हें कब कैसे कहाँ मिलेंगी ये रिलीफ्स?
1: सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ जो $1,000 हमारा वर्क रिलेटेड जो एक्सपेंसेस है उन्होंने बोल दिया कि आप क्लेम कर सकते हो स्टैंडर्ड विदाउट स्टैंडर्ड वर्क रिलेटेड एक्सपेंसेस ऑफ $1,000 विदाउट रिसीट्स के, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो पहले सिर्फ $300 होता था, तो जैसे आपने वर्क रिलेटेड कुछ लेट्स से $900 का आपने वर्क रिलेटेड लैपटॉप ले लिया है, तो आप लैपटॉप को पूरा क्लेम कर सकते हो एक ही बारे में, और उसके लिए आपको रिसीट्स की जरूरत नहीं है। पर फिर भी मैं बोलूंगा अपने श्रोताओं को, मेरी रिक्वेस्ट है कि ऑडिट कभी भी एटीओ से आ सकता है, किसी रीजन के कारण भी आ सकता है, वो आपको फिर भी पूछ सकते हैं कि आपने ये $1,000 या $900 कहाँ पे खर्चा, क्यों खर्चा, बताएं मुझे। चाहे वो आप लॉग बुक रखें, चाहे आप रिसीट रखें ना रखें, पर फिर भी कुछ ना कुछ उसके रीजंस रखें। दूसरा इसके बारे में मैं बात करूंगा कि एक इन्होंने नया ऑफसेट, टैक्स ऑफसेट इंट्रोड्यूस किया है गवर्नमेंट ने, जो कि है वर्किंग ऑस्ट्रेलियन टैक्स ऑफसेट, जिसका मतलब ये है कि आपको अगर आप वर्किंग क्लास को बिलोंग करते हैं, मतलब एज ए एम्प्लॉई हो आप, आपको $250 आपको अपने आपके टैक्स रिटर्न जो कि होगी 1 जुलाई 2027 से शुरू होगी, तो मतलब ये जो टैक्स ऑफसेट है ये आपको मिलेगा आपके 30 जून 2028 के बाद। तो ये ध्यान रखना है कि ये 2027-2028 इनकम ईयर पे लागू होता है, और ये टैक्स ऑफसेट है $250, ना कि टैक्स डिडक्शन। टैक्स डिडक्शन क्या होता है, वो आपकी इनकम को कम करता है। जो टैक्स ऑफसेट होता है वो आपके टैक्स को कम करता है। तो लेट्स से अगर आपका टैक्स बिल हुआ है $1,000, तो उसमें से $1,000 में से $250 आपको सीधा टैक्स बिल से कम हो जाएगा, $750 देना पड़ेगा।
0: जी नितिन, इन अहम बदलावों को आसान भाषा में समझने में हमारी मदद करने के लिए और हमारे श्रोताओं के लिए ये जानकारी लाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: स्वाति, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, एंड सब श्रोताओं को नमस्कार।
0: और सुनने वालों के लिए एक जरूरी बात कि ये सिर्फ एक सामान्य जानकारी है, इसे निजी फाइनेंशियल सलाह ना समझें। अपनी सिचुएशन के हिसाब से किसी रजिस्टर्ड टैक्स एजेंट या फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। SBS हिंदी पर इस अंश को आप तक लेकर आई स्वाति शर्मा, धन्यवाद। SBS हिंदी की श्रृंखला
2: मनी मैटर्स,
0: अब फाइनेंस की जानकारी आसान भाषा में।
3: के लिए लेकर आए हैं पुरस्कार विजेता नाटक, अंतर्राष्ट्रीय खेल और वृत्त चित्रों की दुनिया। SBS, विविधताओं का एक संसार। देखिए SBS अपनी टीवी पर चैनल 30 और SBS वाइसलैंड चैनल 31 पर।
4: SBS South Asian brings you closer to South Asia. News in 10 languages, the SBS Spice podcast and the hottest tracks on SBS South Asian radio. There is so much to explore. Check it out now on the SBS audio app or website.
5: SBS स्पोर्ट, खेल प्रेमियों के लिए नंबर एक जगह। साइकिलिंग, मोटर स्पोर्ट, विश्व एथलेटिक्स और भी बहुत कुछ। sbs.com.au/sport पर जाएं।
3: पूरी दुनिया की कहानियों का एक संसार, SBS वर्ल्ड मूवीज पर। देखिए सातों दिन 24 घंटे चैनल 32 पर मुफ्त, या SBS ऑन डिमांड पर स्ट्रीम करें। SBS ऑन डिमांड पर सैकड़ों टीवी शो और फिल्में मुफ्त में उपलब्ध हैं। कहानियों की इस दुनिया को अपने फोन, स्मार्ट टीवी, टैबलेट या लैपटॉप पर देखें। आज ही SBS ऑन डिमांड ऐप डाउनलोड करें या वेबसाइट पर जाएं। SBS वर्ल्ड न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज और उभरती हुई कहानियाँ जो आपके लिए मायने रखती है ऑस्ट्रेलिया और दुनिया भर से। देखिए SBS वर्ल्ड न्यूज हर रात 6:30 बजे SBS और SBS ऑन डिमांड पर।
6: Unscripted, untamed, unforgettable.
7: Lord Season 4, the Arctic. Nothing can prepare you for this.
6: 10 brave souls, far from home, close to freezing.
8: It's a whole new frontier.
9: Oh my God!
6: The absolutely real.
8: Cold like this can kill you.
6: Reality series.
7: It's on like Donkey Kong.
6: Alone Australia. Streams 15th of July on SBS On Demand.
2: एस बी एस हिंदी पर हमारे साथ वापस जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको कोई भी एस बी एस हिंदी का ऑडियो कार्यक्रम पसंद आता है और आप उस पॉडकास्ट को एक बार फिर से सुनना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं sbs.com.au/hindi, और हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी ज़रूर फॉलो और लाइक करें। sbshindi के नाम से आपको मिल जाएगा, जहाँ ना सिर्फ ऑडियो पॉडकास्ट बल्कि कम्युनिटी इवेंट्स और बहुत सारा वीडियो कॉन्टेंट भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इस वक्त अब समय हो गया है इंडिया रिपोर्ट का, जिसमें होती हैं भारत की कुछ खास खबरें।
9: अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी को लेकर राजनीति गरमाने लगी है। एसआईटी जांच में हो रहे खुलासे को सार्वजनिक किए जाने की मांग विपक्ष द्वारा किया जा रहा है। इस पूरे मामले पर भाजपा और आरएसएस को विपक्ष घेर रहा है। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया सुनीत ने एसआईटी रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग करते हुए कहा,
10: एसआईटी की जांच रिपोर्ट को तुरंत सार्वजनिक करें, इसको एक वेबसाइट पर डाला जाए, जिससे इस देश के 100 करोड़ हिंदू उसको पढ़ सके, उसको देख सके और समझ सके कितना बड़ा घोटाला हुआ है, किसने किया है। हमारी दूसरी मांग है कि जो कलंकित ट्रस्ट है, जिसकी नाक के नीचे इतनी बड़ी चोरी हुई, उसको भंग किया जाए, उसकी कोई विश्वसनीयता अब रह नहीं गई है। हमारी तीसरी मांग है कि चंपत राय बंसल और उनके जैसे जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, जो बड़ा पैसा डकार कर बैठे हैं, उनके खिलाफ भी एफआईआर हो, उनकी भी जांच हो। इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, वो आंख में धूल झोंकने का काम है। हमारी चौथी मांग है कि जब 40 दिन में 70 चोरियां सामने आ रही हैं, तो शुरू से जो चढ़ावा चढ़ा है उसका निष्पक्ष ऑडिट हो, स्वतंत्र ऑडिट हो।
9: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए सुप्रिया सुनीत कहती हैं,
10: देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने भूमि पूजन से लेकर शिलान्यास और उद्घाटन, प्राण प्रतिष्ठा सब किया, शंकराचार्यों को किनारे करके किया, हर मान्यता को ताक पर रख के किया, श्रेय लेने के लिए किया, आज इस चंदा चोरी पर, इस महापाप पर चुप क्यों है? उनको अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। इस देश से हिंदुओं की आस्था को आहत करने के लिए, विश्वासघात करने के लिए, धोखा करने के लिए माफी मांगनी पड़ेगी। और हमारी अंतिम और सबसे जरूरी मांग है कि इस पूरे महाघोटाले की जो जांच है, वो सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज की निगरानी में हो, जिससे सच सामने आए। क्योंकि एसआईटी जो बाबुओं से बनी है और बाबू को ही जाकर रिपोर्ट दे रही है, कातिल और मुंसिफ एक होकर सच सामने नहीं आ सकता है।
9: चढ़ावा गड़बड़ी मामले में दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग लगातार कांग्रेस पार्टी कर रही है। इसके लिए वह दबाव बनाने के तमाम प्रयास भी कर रही है। मंगलवार को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय समेत कुछ नेताओं ने अयोध्या कूच करने की कोशिश की। प्रशासन ने उन्हें राम मंदिर आने से रोक दिया। हालांकि रात में अजय राय को पुलिस के निरीक्षण में राम मंदिर का दर्शन कराया गया। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर राम प्रेम का तंज कसा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा,
11: आज राम की भक्ति की वकालत कौन कर रहा है? आज भगवान राम की भक्ति की दुआई कौन दे रहा है? 2017 के पहले जो जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे, 2017 के पहले जब उत्तर प्रदेश में राम भक्त कहता था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और राम भक्तों पर जो समय गोली चलाते थे, आज वे आस्था की वकालत करते हुए दिखाई देते हैं। ये आपकी ताकत है, आपकी आस्था की ताकत है कि आज उनको आपका पिछलग्गू बनने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, आपके वोट बैंक की ताकत है।
9: राम और कृष्ण के अस्तित्व को नकारने का आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाते हुए योगी आदित्यनाथ कहते हैं,
11: अब उन्हें अपने आप पर पश्चाताप होता होगा, अपने कर्मों पर पश्चाताप होता होगा कि समाजवादी पार्टी गलत थी। वह कांग्रेस जो 2017 के पहले राम के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, श्री कृष्ण के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, आज वो भी कहती है कि राम तो सबके हैं, अब ये लोग सब मचल रहे हैं अयोध्या जाने के लिए, लेकिन प्रभु राम तो जग नियंता हैं, इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वे भी जानते हैं सही।

0: कौन है और बुरा कौन है, सही कौन है और बुरा कौन है।
1: भाजपा इस पूरे मामले पर बचाव की बजाय विपक्ष पर ही हमलावर है। इसके अलावा निष्पक्ष जांच की बात भी वह बार बार दोहरा रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस पार्टी पर बंटवारे की राजनीति करने का आरोप लगाया है। तेलंगाना दौरे पर मंगलवार को कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इसका मुकाबला लोकतांत्रिक तरीके से किया जाएगा। भाजपा मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाकर विपक्ष पर बाधा खड़ी करने का आरोप लगा रही है। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र में सरकार की पीठ थपथपाई है। मंगलवार को गुजरात में एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने रक्षा क्षेत्र में विदेशी निर्भरता कम होने का दावा किया।
2: और एक समय था जब भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए बड़े पैमानों पर दुनिया के दूसरे देशों पर निर्भर था, यानी दुनिया के दूसरों से वह आयात करता था, इंपोर्ट करता था। लेकिन आज भारत डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट के क्षेत्र में तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। इंडिजिनस प्लेटफॉर्म की सफलता और प्राइवेट सेक्टर की इसमें बढ़ती हुई भागीदारी और स्टार्टअप की नई ऊर्जा ने मिलकर एक मजबूत डिफेंस इकोसिस्टम भी भारत में तैयार किया है।
1: आत्मनिर्भर भारत अभियान का उल्लेख करते हुए राजनाथ सिंह कहते हैं,
2: आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट भारत अभियान के तहत हम एरोस्पेस और डिफेंस जैसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में इंडिजिनस कैपेबिलिटीज को बढ़ावा दे रहे हैं। मेक इन इंडिया डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड जैसे इनिशिएटिव इस दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बजट में मॉडर्नाइजेशन और कैपिटल प्रोक्योरमेंट के लिए किए गए प्रोविजंस का उद्देश्य डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहित करना है और उन्हें ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा भी बनाना है।
1: भारत और जापान अपनी आपसी साझेदारी को और मजबूती देने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची आज से 3 दिवसीय भारत के दौरे की शुरुआत कर रही हैं। इस दौरान उनकी प्रधानमंत्री मोदी के साथ कई अहम मुद्दों पर कल बातचीत होनी है। सोल में भारत जापान शिखर वार्ता के बाद दोनों नेता कुछ अहम घोषणा भी कर सकते हैं। इसमें रक्षा, ऊर्जा और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने वाली घोषणाएं शामिल होंगी। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्वरत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।
3: SBS हिंदी पर वापस जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं नबील और अब एक छोटा सा एड ब्रेक लेंगे। एड ब्रेक से वापस आकर शुरू होगा गानों का सिलसिला, तो गाना प्ले करेंगे और कुछ रिपोर्ट्स जो बची हैं वो आपके लिए लेकर आएंगे, तो बने रहिए SBS हिंदी पर।
4: फुटबॉल दुनिया को एक साथ लाता है और वियटजेट भी। मेलबर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन या पर्थ से सीधे वियतनाम के लिए उड़ान भरें, फिर एशिया और यूरोप के लोकप्रिय स्थलों के लिए अपनी यात्रा जारी करें। हो ची मिन सिटी से कनेक्टिंग फ्लाइट्स का हमारा विशाल नेटवर्क एशिया और यूरोप की यात्राओं को आसान बनाता है। टोक्यो, सोल और प्राग की दिलचस्प सड़कों, बाली के गर्म समुद्री तटों या बैंकॉक, टैपेई और हांगकांग के जीवंत बाजारों में घूमने का आनंद उठाएं। ऑल इन एक तरफा टिकट केवल $199 से शुरू। VietJetAir.com और VietJet की मोबाइल ऐप में आकर्षक ऑफर्स के बारे में जानकारी पाएं। आइए VietJet के साथ उड़ान भरें।
5: SBS News In-Depth Podcast, देश और दुनिया भर के समाचार जो अहमियत रखते हैं, सुनिए SBS News In-Depth आपके पसंदीदा पॉडकास्ट ऐप पर या sbs.com.au/audio पर जाएं। SBS World News, ब्रेकिंग न्यूज और उभरती हुई कहानियाँ जो आपके लिए मायने रखती है, ऑस्ट्रेलिया और दुनिया भर से देखिए SBS वर्ल्ड न्यूज हर रात 6:30 बजे SBS और SBS ऑन डिमांड पर। चैनल 33 पर SBS फूड जो परोसता है सबसे स्वादिष्ट जगह, स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय भोजन में बड़े नाम। SBS फूड चैनल 33 पर 24 घंटे।
6: Like your music? We have got you covered on SBS South Asian. There

0: shows like The Bollywood Session every morning and evening, 3 hours every day of just the hits from Bollywood. Need a party playlist? There's Desi Dance Party on Friday and Saturday nights. It's your weekend soundtrack. Enjoy Punjabi music. Don't miss Bhangra hits on weekend afternoons. Find your next favorite SBS South Asian show on the SBS Audio app, website or SBS On Demand.
1: sbs.com.au/hindi को अपना ऑनलाइन होम बनाइए, ताज़ा तरीन खबरें अपनी भाषा में पाइए। sbs.com.au/hindi पर जाएं। क्या आपको SBS हिंदी सुनना अच्छा लगता है? अपनी बातचीत हमसे जारी रखिए हमारे फेसबुक पेज पर, हमारा पेज लाइक करें। SBS हिंदी फेसबुक पर भी है।

आप सुन रहे हैं SBS हिंदी और मैं हूं नबील। हमारे साथ वापस जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमने गाने से पहले आज के शो का सवाल पूछा था कि अगर किसी बॉलीवुड मूवी का आप सीक्वल या रीमेक देखना चाहते हैं कि वो कहानी आगे कैसे बढ़ती है तो वो कौन सी मूवी होगी। और एक मैसेज आया है संकेत का फ्रॉम बर्विक, वो लिखते हैं कि आई वुड लाइक टू सी

0: अ सीक्वेंस ऑफ मुन्ना भाई MBBS, और आई थिंक बड़ी मज़ेदार कहानी होगी अगर मुन्ना भाई संजय दत्त के जो कैरेक्टर था वो एज अ डॉक्टर के रूप में आगे कहानी पढ़े, क्योंकि जितना मुझे याद है एक मूवी आई थी लगे रहो मुन्ना भाई, लेकिन उसमें उनका थोड़ा सा कैरेक्टर डिफरेंट था, हालांकि वो एक ही सीरीज़ की थी। तो लगे रहो मुन्ना भाई दूसरी मूवी थी, मुन्ना भाई MBBS पहली थी, और बड़ा इंटरेस्टिंग होगा एक्चुअली इस फिल्म का सीक्वल देखना। तो 04397997667 पर आप भी मैसेज करके बताइए कि आगे किस मूवी की कहानी आप सुनना चाहेंगे, देखना चाहेंगे इनफैक्ट। और अगर मैं अपना चॉइस बताऊं तो गजनी मुझे बड़ी पसंद है, जो 2008 में आई थी और उसको भी लगभग 18 साल हो गए। बड़ा ही दर्दनाक एंड था, लेकिन उसके बाद क्या होता है, क्या कुछ नया रुख बदलता है, वो ज़रूर मैं देखना चाहूँगा। तो 04397997667 हमारा नंबर है, मुझे आपके मैसेजेस का इंतज़ार है, अपने नाम के साथ अपना जवाब ज़रूर लिखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, और अब जो रिपोर्ट आने वाली है वो दो भागों में है। आज हम मेलबर्न में बसे इंडियन माइग्रेंट्स की कुछ ऐसी कहानियाँ सुनेंगे जो संघर्ष से आकर से आगे बढ़कर सेल्फ डिस्कवरी, पर्पज़ और बदलाव की तरफ ले जाती हैं। देवेश सरीन, अर्जुन सकादास और जतिन कोटिचा ने अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए हैं और एक नई किताब के बारे में भी बताया है जिसमें ऐसे ही माइग्रेंट्स की कहानियाँ शामिल हैं। इस बातचीत के पहले भाग में हम जुड़ेंगे लेखक देवेश सरीन और सन्यासी अर्जुन सकादास के साथ। तो आइए सुनते हैं भव्य पांडे की ये रिपोर्ट।
1: अपने मूल देश से दूर ऑस्ट्रेलिया में नई जिंदगी शुरू करना कैसा होता है? क्या माइग्रेंट जीवन सिर्फ संघर्ष और सर्वाइवल जॉब्स तक ही सीमित है, या इसके पीछे और भी कई अनकही कहानियां होती हैं? इस सवाल का जवाब देवेश सरीन अपनी नई किताब में आप तक लेकर आ रहे हैं, और अन्य दो मेहमानों के साथ आज SBS के स्टूडियो में मौजूद हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं देवेश सरीन, अर्जुन सखादास और जतिन अशोक कुमार कोटेचा, जो पहचान यानी आइडेंटिटी, मानसिक स्वास्थ्य, पर्पस और नई शुरुआत के अपने अनुभव हमारे साथ साझा करेंगे। ये बातचीत मैं आप तक दो भागों में लेकर आऊंगी, और इस बातचीत के पहले अंश में आइए आपको मिलवाते हैं अर्जुन सखादास से, जिनकी कहानी दिल्ली के एक संपन्न परिवार से ऑस्ट्रेलिया में स्ट्रगल के बीच नई पहचान खोजने और अंततः एक मंक बनने की अनोखी यात्रा है। आज वे आध्यात्मिक मार्गदर्शन और समाज सेवा के माध्यम से लोगों को ये संदेश देते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी सफलता भीतर की शांति और उद्देश्य यानी पर्पस में होती है।
2: हरे कृष्णा, मेरा नाम अर्जुन सखादास है। मैं 2007 में स्टूडेंट आया था मेलबर्न में पढ़ाई करने के लिए। समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग हैपेंड मेरे मेलबर्न आने से जस्ट पहले। मेरा वीज़ा एप्लीकेशन और मेरा स्पिरिचुअल जर्नी साथ साथ स्टार्ट हुआ
3: जी।
2: अभी जस्ट बिकॉज आई वांट टू गिव दिस एज अ ट्रिब्यूट टू मेरी सिस्टर, शी जस्ट पास्ड अवे फ्यू वीक्स बैक। Because of her, I am on my spiritual journey. तो उन्होंने मेरे वीज़ा एप्लीकेशन के समय ही में उन्होंने मेरे स्पिरिचुअल जर्नी का सीट सो किया। शी वॉज वेरी वरीड कि मैं अभी मेलबर्न जा रहा हूँ एंड ऑलरेडी आई एम बिट ऑफ अ नॉटी किड, तो अभी मेलबर्न जाके क्या करने वाला है, क्या और उत्पात मचाएगा पता नहीं है फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिया में ही भगवद गीता के एक बहुत एसेंशियल टीचिंग्स जिसने मेरा लाइफ ट्रांसफॉर्म किया, दैट बेसिकली उससे मुझे इंट्रोड्यूस कराया मेरी सिस्टर ने। फिर मैं यहाँ पे अपने बैचलर्स करने आ गया। एक इंक्विजिटिवनेस ऑलवेज मेरे मन में थी अबाउट लाइफ, क्योंकि एक क्वेश्चन दिमाग में बहुत ज़्यादा हिट करता था कि व्हाई गुड थिंग हैपन्स टू बैड पीपल एंड बैड थिंग हैपन्स टू गुड पीपल। ऐसा क्यों हो रहा है, इतना डिस्पैरिटी, इतना डिफरेंस क्यों है इस सोसाइटी में, कि मुझे पता है कि ये व्यक्ति गलत कर रहा है, बट जितने मेरे पैरामीटर्स हैं खुशी के वो सारे पैरामीटर्स पे ये परफेक्ट है। सो दिस वॉज रियली बगिंग मी, वो मुझे बहुत तंग कर रहा था। तो मेरे वो जिज्ञासा बहुत ज़्यादा थी जिसके कारण मेरे आध्यात्मिक जर्नी, मेरा स्पिरिचुअल जर्नी थोड़ा सा सीरियसली लेना शुरू किया। तो मैं जब पढ़ाई भी कर रहा था तो मैं भगवद्गीता भी साइमल्टेनियसली पढ़ रहा था। संगत संजायते कामान, तुम्हारी संगत ही तुम्हारी डिज़ायर्स डेवलप करती है। सो आई वॉज फॉर्चुनेट कि मुझे यहाँ पे सेंटली माइंडेड लोगों का एसोसिएशन साथ साथ मिला। And that's how it all started.
3: जानना चाहूंगी कि अध्यात्म जो वो होता है वो कहीं ना कहीं आपको पर्पस देने में हेल्प करता है। तो ऐसे कई सारे माइग्रेंट्स होंगे यहाँ पर जो अपना पर्पस ढूंढ रहे हैं, तो आपके निजी जीवन में आपने क्या कुछ वो चीजें सीखी हैं जो आप उनको आज बताना चाहेंगे?
2: You know, to begin with,

0: विश स्पेशली इनका मैं थैंक्स करना चाहूँगा, बिकॉज इनडायरेक्टली मैंने इनसे दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल सीखे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आपके. तुम अपनी जर्नी में जितने ज़्यादा लोगों को सपोर्ट करके साथ ले जा सको, दैट मेक्स यू ग्रेट. तुम इसलिए महान नहीं बनते क्योंकि तुम अपनी जर्नी में बहुत तेज़ चल रहे हो, तुम इसलिए महान बनते हो बिकॉज तुमने और बहुत लोगों को तेज़ चलने में मदद करी. तो यही सेम प्रिंसिपल भगवद्गीता का बहुत कोर प्रिंसिपल है. मैं एक ऐसा करिकुलम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म अभी जिस पे मैं वर्क कर रहा हूँ, जिसके कारण जिसको यूज़ करके मैं काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे रीच आउट कर रहा हूँ, स्पेशली जो स्टूडेंट कम्युनिटी है, बिकॉज वो सबसे वल्नरेबल कम्युनिटी है, बिकॉज उनके पास ऑफर करने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं. दे डोंट हैव मनी, दे डोंट हैव मच स्किल्स, तो वो बहुत ही लेफ्ट आउट कम्युनिटी है. तो मेरा उस कम्युनिटी के साथ कॉन्ट्रीब्यूशन ही इस समय ये है कि टू इक्विप देम, समहाउ उनको सशक्त करें, किसी तरह उनकी स्ट्रेंथ किसी तरह बिल्ड हो, कि वो जो अचीव करने यहाँ पे आए हैं इन टर्म्स ऑफ पैसा कमाना, पढ़ाई करना, वो इस तरह से करें कि वो इमोशनली, मेंटली, फिजिकली खुद को डैमेज ना करें बस. और उसके लिए स्पिरिचुअल टूल्स कुछ हम प्रिपेयर करते हैं, सर्टन मेडिटेशन, मंत्र, जाप, कीर्तन, सर्टन भगवद्गीता से रिलेटेड टॉक्स होती हैं जो उनको हेल्प करती हैं कि नेविगेट करने उनके लाइफ के प्रेशर्स में. बिकॉज अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको पता है व्हाट ऑल दे गो थ्रू, और जो स्टूडेंट के बाद अपनी लाइफ आगे जी रहा है उसको भी पता है कि कितने चैलेंजेस से एक बच्चा गुजरता है यहाँ पे. और बहुत ही लेफ्ट आउट कम्युनिटी है स्टूडेंट कम्युनिटी, मेरे पर्सनल पर्सपेक्टिव के हिसाब से. सो यस, दैट्स माई पर्पस राइट नाउ, टू समहाउ और अदर help this community grow in a way that they turn out to be those migrants jo that will make their country, their parents proud in future. Yeah.
1: दिवेश जी, आप इस किताब के माध्यम से कई सारे माइग्रेंट्स की कहानियों को सामने ला रहे हैं. आपके सफर के बारे में जानना चाहूंगी और साथ ही मैं जानना चाहूंगी कि इस किताब के माध्यम से आपका क्या गोल रहा है.
2: नमस्ते भाविया जी और सारे लिसनर्स को भी. When I think about migrants' life, I think about कि जब हम आए थे यहाँ पे उस टाइम पे रोल मॉडल्स नहीं थे कि जिनको देख के हम सोच सकें कि हाँ ये भी पॉसिबल है. तो किताब के माध्यम से एक सिंपल मैसेज था कि नेक्स्ट दिवेश की हेल्प करनी है, कि जो हमारे को हेल्प नहीं मिली, और उस मैसेज को आगे बढ़ाना है कि हमारी कम्युनिटी में जिन लोगों ने हार्डवर्क किया है, हु हैव बीटन द ऑड्स ऑन सो मेनी ओकेजन, उनको शोकेस करना, उनकी पूरी लाइफ कैसे रही है, उनकी फाउंडेशन कैसे रही है, वो माइग्रेंट्स लाइफ से उनकी पूरी जर्नी एज अ लेसन शेयर करना चाहता था. और जो लोकल्स हैं उनको भी थोड़ा बहुत समझाना, इन द सेंस कि माइग्रेंट्स किस चीज़ों से गुजरते हैं. कुछ वो सिर्फ एक ऊबर ड्राइवर देखते हैं, वो सिर्फ एक 7-Eleven में काम करने वाला बंदा देखते हैं, बट उनको ये नहीं मालूम कि इस बंदे की लाइफ क्या है. और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे मुझसे कि आप क्यों छोड़ के आते हो सब कुछ यहाँ पे, आके इंजीनियर होने के बावजूद भी ऐसी छोटी मोटी जॉब पकड़ लेते हो, कैसे अपने आप को मोल्ड करते हो, और अभी भी लगता है कि फुली इंटीग्रेट नहीं होते हम. जैसे मेरे केस में था कि आई एम नॉट फुली इंडियन नाउ बट आई एम नॉट ऑस्ट्रेलियन इनफ. तो वो एक चैलेंज था. और इन सबको कर करके तुम्हें एक बॉदर करता थोड़े टाइम के बाद, एंड देन यू थिंक कि यार इसका कोई सोल्यूशन होना चाहिए. तो इन अ वे वो माइग्रेंट्स लाइफ बन गया.
1: क्या लगता है आपको कि ये जो समुदाय है माइग्रेंट्स का, ये ऑस्ट्रेलिया में किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा है? और एक पक्ष ये भी कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया की ऑथेंटिसिटी को थोड़ा सा डगमगा रहा है. आपका इसको लेके क्या मानना है?
2: भावे जी, जो ऑस्ट्रेलिया के बारे में मैं जानता हूँ वो माइग्रेंट्स पे ही ग्रो की है. एंड अगर आप बुक का फॉरवर्ड भी पढ़ेंगे जो साइमन कैटिज ने लिखा है, द लकी कंट्री वी कॉल द लकी कंट्री इज बिल्ड ऑन द कंपाउंड इंटरेस्ट of migrants over the years as well. So, with all due respect to everyone who's been the foundation of it, जो लोग यहाँ पर आए हैं सब ने बहुत effort डाला इस country को grow करने के लिए. तो different nationalities के लोगों ने इसको घर बनाया और अब सबकी families Australia का part हैं. तो I would say कि migrants have played a big role, जहाँ पर आके हम jobs में add करते हैं, value add करते हैं, और कैसे leadership positions में भी value add कर रहे हैं, as an entrepreneurs jobs create कर रहे हैं, जो मैं बिलीव करता हूँ कि माइग्रेंट्स ने बहुत वैल्यू ऐड की है, एंड दैट नीड्स टू बी शोकेस्ड विद व्हाट दे हैव अचीव. देखिए, जतिन भाई जो आज मेरे साथ हैं और अर्जुन प्रभु, दे कैन ऑल्सो शेयर मोर ऑन इट, बट मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि ये हमारे सिर्फ 5 सेंट्स हैं. आई एम जस्ट लिटिल दिवेश. मेरे मन में था कि कॉर्पोरेट्स में काम करके मैंने बहुत सुना कि दिस ऊबर ड्राइवर कुड बी योर कज़न और दिस 7-Eleven गाय कुड बी योर कज़न. मैं सिर्फ समझाना

0: करता था कि हमारी लाइफ 20 साल की उम्र में आधा बाल सफ़ेद कब हो गए पता नहीं लगा, कि फैमिली को सपोर्ट करना है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर वालों को यहाँ बुलाना है, और हमारे को कभी वो वॉइस नहीं मिलती और कभी हम इसको देखते नहीं हैं एज माइग्रेंट्स। मेरे मन में ये था, और आने वाले माइग्रेंट्स के लिए रोल मॉडल्स मिलेंगे तो वो हमसे भी बेटर करेंगे और एक कम्युनिटी आगे बढ़ेगी।
1: दोस्तों, इस बातचीत के दूसरे अंश में हम बात करेंगे जतिन कोटेचा के साथ, जो कि एडवेंचर यानी रोमांच और नई चुनौतियों के जरिए लोगों को प्रेरित करते आए हैं कि सपनों को कल नहीं आज जिया जाता है। बने रहें SBS हिंदी के साथ।
2: आप सुन रहे हैं SBS हिंदी, और अभी अभी आपने सुनी भव्य पांडे की रिपोर्ट, जिसमें आज वो लेकर आए हैं कुछ मेलबर्न में बसे इंडियन माइग्रेंट्स के कहानियाँ, जो संघर्ष से आगे बढ़कर सेल्फ डिस्कवरी, पर्पस और बदलाव की तरफ ले जाती हैं। इसका पहला भाग अभी आपने सुना और दूसरा भाग हम आपको कुछ ही देर में सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले एक गाना आएगा, एक एड ब्रेक आएगा, और उसके बाद तो आज के शो में हमने ये सवाल पूछा था कि अगर आप किसी आइकॉनिक बॉलीवुड मूवी का रीमेक या सीक्वल देखना चाहते हैं तो वो कौन सा होगा, और बड़े मैसेजेस आए हैं, और उसमें से एक मैसेज आया है कि वीर ज़ारा का सीक्वल देखने में मज़ा आएगा कि वो कहानी आगे बढ़ती है। ये मैसेज हमें भेजा है सिडनी से चेतन शाह ने, और एक और मैसेज आया है क्रेगी बर्न से, राजेंद्र वोरा लिखते हैं कि हम पूरा परिवार फिल्म बागबान का सीक्वल देखना चाहते हैं, बागबान का। तो आप भी बताइए कि अच्छा, एक और आया है कमल जी का सिडनी से, वो लिखते हैं कि वो धुरंधर 3 का इंतज़ार कर रहे हैं। तो कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं, 04397997667 पर मैसेज करके बताइए कि आप किस मूवी की कहानी को आगे देखना चाहते हैं, कि आगे बढ़कर उसमें क्या होता है। 04397997667 हमारा नंबर है, और अब वक्त हो गया है एक गाने का, आमिर खान की एक मूवी का ये गाना है तुरकलियां, लाल सिंह चड्डा से। इसे एंजॉय करिए और वापस आकर एक एड ब्रेक लेंगे, फिर आपसे मुलाकात होगी थोड़ी देर में।

0: Want to enjoy the sights of South Asia whilst you listen to the sounds of SBS South Asian? We've got you. Watch SBS South Asian on SBS On Demand. It's your favorite radio channel in your language with great music from all over South Asia. But now, it's accompanied by stunning drone shots. Think mountain peaks, city streets, beaches and bazaars. It's radio with a view. SBS South Asian, stream it on SBS On Demand.
1: SBS Sport. Khel premio ke liye number ek jagah. Cycling, motorsport, wish athletics aur bhi bahut kuch. sbs.com.au/sport par jaye.
2: अंतर्राष्ट्रीय वृत्त चित्रों से लेकर क्लासिकल कल्ट फिल्मों तक, विश्व स्तरीय नाटक से लेकर गुदगुदाने वाली हास्य फिल्मों तक, देखिए SBS वाइसलैंड चैनल 31 पर। जानिए SBS के टीवी और रेडियो चैनलों पर क्या चल रहा है और क्या आने वाला है। sbs.com.au/guide पर जाएं। SBS वर्ल्ड न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज और उभरती हुई कहानियाँ जो आपके लिए मायने रखती हैं, ऑस्ट्रेलिया और दुनिया भर से, देखिए SBS वर्ल्ड न्यूज हर रात 6:30 बजे SBS और SBS ऑन डिमांड पर।
3: Alone season 4, the Arctic.
4: 10 brave souls, far from home, close to freezing.
5: It's a whole new frontier.
6: Oh my God!
4: Alone Australia streams 15th of July on SBS On Demand.
1: अपने पसंदीदा प्रोग्राम सुनने के लिए हमारी ऑडियो ऐप आज ही डाउनलोड करें। ये ऐप स्टोर और गूगल प्ले पर मुफ्त उपलब्ध है।
7: आप सुन रहे हैं SBS हिंदी, मैं हूं नबील। और एड ब्रेक से पहले आपने सुना था भव्य पांडे की रिपोर्ट, जिसमें मेलबर्न में बसे कुछ इंडियन माइग्रेंट्स की कहानी थी। और आइए उसी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए अब हम जुड़ते हैं जतिन कोटेचा से, जो खुद को डेलिबरेट एडवेंचरर बताते हैं और दुनिया के सबसे बड़े ज्वालामुखी में से एक पर चढ़ने की यात्रा कर चुके हैं। आइए सुनते हैं भव्य पांडे की ये रिपोर्ट, इसका दूसरा और अंतिम भाग है ये।
8: दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं द माइग्रेंट लाइफ बुक पर। तो आइए जानते हैं कैसे जतिन कोटेचा ने ऑस्ट्रेलिया में एक सफल जीवन ही नहीं बनाया, बल्कि उनके व्यक्तिगत संकटों ने उनको जीवन को एक नए पर्सपेक्टिव यानी नजरिए से देखने में मदद की। जहां लोग अपनी 9 to 5 की नौकरी में फंसे रहते हैं, जतिन जी कई सारी ऊंचाइयों को छू कर आ चुके हैं।
9: मेरा एक्सपीरियंस और मेरा टेक अब तक इन दोनों से तो बहुत अलग रहा। देखिए, मेरी जर्नी एक टिपिकल माइग्रेंट की तरह ही रही, जो आज के ज़माने के माइग्रेंट, मतलब के स्टूडेंट्स की तरह, आप चार बाहर ओवरसीज ट्रैवल कर रहे हो, पढ़ाई करने जा रहे हो, देन यू एस्टैब्लिश योर लाइफ। मेरी जर्नी चालू हुई थी यूके में 2001 में। मैं वहाँ पे गया था पढ़ने के लिए। आई स्टडीड, वर्कड, काम धंधा भी किया वहाँ पर, इवन मेट माई वाइफ ओवर देयर। और वहाँ पे एक लाइफ एस्टेब्लिश की। वहाँ से इंडिया थोड़ा काम किया, थोड़ा सा समय रहा, फिर इवेंचुअली वी वेर इन ऑस्ट्रेलिया। थ्रू दिस जर्नी एक प्रिंसिपल तो था ही, जो हमेशा सबका होता है, कोई भी माइग्रेंट जो हमारी तरह जाता है, कि बाहर जाना है, करियर एस्टेब्लिश करना है या बिजनेस करना है।

0: पैसे कमाने एक अच्छी लाइफस्टाइल जीनी है। हम हमारी स्टोरी की शुरुआत वहाँ से करते हैं, कॉलेज पास किया, कॉलेज में गए, वहाँ से क्या हुआ। पर जब एक पॉइंट आता है लाइफ में, जब वो बोलते हैं ना यू हिट अ ब्रिक वॉल, तब पता चलता है कि यार सच में स्टोरी यहाँ से चालू हुई थी या कहीं पहले हुआ था। एंड मेरे साथ वही हुआ। और मुझे जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे सब सपने होते हैं, वी आर वेरी इनोसेंट, तब हमारे लिए फंड्स कहाँ से आएंगे, टाइम कैसे निकलेगा, लीव कैसे मिलेगी काम से, वो सब नहीं मायने रखता। हमारे लिए हमारे सपने मायने रखते हैं। किसी को सचिन तेंदुलकर बनना है, मेरे जैसे लोग को मुझे पहाड़ चढ़ना था, मुझे मोटरसाइकिल चलाना था। फिर होता है जैसे बोलते हैं ना शर्मा जी का लड़का वो कॉन्सेप्ट आ जाता है कि ये कर रहा है वो कर रहा है, एंड देन सडनली यू आर इन द सेम रेट रेस एज एवरीवन एल्स। व्हेन आई हिट द ब्रिक वॉल आई वेंट बैक, और तब सोचा यार मेरे, तब मैंने ये नहीं सोचा था जो मेरे ओरिजिनल सपने थे वो क्या थे, नहीं मोटरसाइकिल चलाना है। तो देन आई रियलाइज के मैं क्या, मैं हम जो लाइफ जीते यहाँ पे, एक मैंने कहीं पे सुना था कि यू बाय द बेस्ट कार, यू आर सिटिंग इन इट इन ट्रैफिक एंड यू आर कंप्लेनिंग अबाउट द ट्रैफिक, जिसके लिए आप काम कर रहे हो, जिसके लिए आप जा रहे हो वहाँ पे, तो वो चेंज ऑफ एटीट्यूड, तो वो दैट्स वो मेरे साथ हुआ कि चलो मैं जो भी कर रहा हूँ, आई डोंट वॉन्ट टू बी इन अ पोजिशन कि मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ कि मैं आई एम लाइक 70-80 ईयर्स ओल्ड, फिर सोचूँ मैं शायद ये कर पाता, अभी कर पा कर सकता, आज के दिन वो कर सकता हूँ क्या। एंड देन आई स्टार्टेड दिस, आई थॉट अबाउट इट, और फिर पहला सपना था मोटरसाइकिल चलाना, मतलब कुछ कहाँ पे जाएंगे। एंड देन आई सम हाउ केम अक्रॉस के भाई चलो ऑस्ट्रेलिया में भी एक रोड है। 2022 में वो प्रोजेक्ट चालू किया, वो राइडिंग अराउंड ऑस्ट्रेलिया, उसमें भी एक ही वही चैलेंज था, टाइम कैसे निकालूंगा उसके लिए, फंड्स कैसे आएंगे, क्या मैं इतना कर सकता हूँ, फिजिकली कर सकता हूँ, क्योंकि इतने साल जब हम कॉन्स्टेंटली डे इन डे आउट काम करते हैं, रोजमर्रा की चीज़ में पड़ते हैं, देन यू लूज योर स्ट्रेंथ। आप फिजिकल स्ट्रेंथ भी लूज करते हो, मेंटल स्ट्रेंथ भी लूज करते हो, बच्चे होते हैं, दे कैन स्टिक ऑन समथिंग एंड कीप ऑन डूइंग इट फॉर द होल डे, यू कांट। पाँच मिनट आप करो, फिर बाद में यू कॉन्स्टेंटली थिंक ये काम है वो काम है, दिन के 10 काम खत्म करने हैं। इफ़ आई वेयर टू फॉल सिक देन आई हैव टू, तो मुझे 2 महीने ब्रेक लेना ही पड़ेगा। समझ लो मैं बीमार हो चुका हूँ अभी मैं बीमार हो चुका हूँ, आज मैं ब्रेक लेके थोड़ा जी भी लूँ, टाइम का प्रॉब्लम सोल्व हुआ, फंड्स का मैं सोच रहा था कैसे होगा, फिर जैसे मैं पेन पेपर लेके बैठा था रियलाइज उतना भी नहीं है। तो मैं सोचा एक काम करता हूँ, फर्स्ट स्टेप लेता हूँ, शायद दूसरा स्टेप अपने आप ही आ जाएगा। तो पहले दिन ख़त्म हुआ, फ्रेंड्स फैमिली लोग सब फर्स्ट दिन आजू बाजू ट्रैवल कर रहे थे, वी स्टेड टुगेदर। दूसरे दिन जब मैं वहाँ से पोर्ट कैम्बल से निकला एंड मैं व्हेन आई वाज लुकिंग बैक, तब रियलाइज हुआ कि अब मैं मेरा ड्रीम जी रहा हूँ, अभी मैंने चालू किया है खुद का ड्रीम जीने के लिए। वो मिरर में पीछे देख रहा था, लोग देख रहे बाय कर रहे, और दूसरा थॉट यह आया लोगों को देख के, अभी घोड़े पे चढ़ गया हूँ अब तो वापस नहीं जा सकता पहले ये डर था कि चलो मैं 3000 तक पहुँच सकता हूँ, 3000 मीटर तक, जब वहाँ पे पहुँचे फिर लगा ना और ज़्यादा कर सकते हैं। एंड लास्ट ईयर आई हिट एज फार एज 6,500 मीटर्स। आई वॉज एक्चुअली अटेम्प्टिंग टू क्लाइंब दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो चिली में है, अनफॉर्चुनेटली मैं ख़त्म नहीं कर पाया, पर आई वॉज सिटिंग एट 6,500 मीटर, वो वहाँ पे आधे घंटे बैठा था मैं, और मैं स्माइल कर रहा था, चलो मैं यहाँ तक तो पहुँच गया। अब अगर जो मैंने ना बोल दिया तो नहीं नहीं नहीं होगा, नहीं पॉसिबल नहीं, यू नो और कुछ काम है, एयर मैनेज नहीं होगा, तो मैं आज यहाँ पे नहीं बैठा होता। उतनी ऊंचाई पे जब आप पर्टिकुलरली ज्वालामुखी पे बैठे हो तो आजू बाजू पहाड़ नज़दीक नहीं होते, दूर होते, तो वहाँ से देख के वही दिख रहा था कि हाँ आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ, क्योंकि मैंने थोड़े टाइम पहले सोचा कि मुझे अपने सपने जीने हैं।
1: SBS न्यूज के लिए इस अंश को आप सबके सामने SBS हिंदी में लेकर आई भव्या पांडे।
2: SBS हिंदी पर एक बार फिर से आपका स्वागत है, मैं हूं नबील, और अब शो का अंतिम मिनट बचा है सिर्फ, और आपसे आज हमने एक सवाल पूछा था कि कौन सी बॉलीवुड मूवी का आप सीक्वल देखना चाहेंगे कि कहानी कहां आगे बढ़ती है। उसमें कई लोगों ने मैसेज किया और एक आखिरी मैसेज मैं पढ़ना चाहूँगा। पराग फ्रॉम मेलबर्न लिखते हैं कि हाय नबील, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू 3 इडियट्स के जो सीक्वल होगा पार्ट 2, उसका

0: all the Bollywood hits you could ever want.
1: This is the Bollywood session on SBS South Asian.
2: प्यार की तरंगे सरगम बन जाती है, संगीत के हजारों धुनें गूंजने लगती हैं।

उसके इशारों पे मैं उचला। जब वो चले संसार झुके, जब वो मुड़े तरनी बहे, जब हाथ उठाए आंधी रुके, जब पल के झुकाए तो वक्त रुके। डरता करता फिर भी है मेरा मन, नाम सुन के बढ़ जाए धड़कन, मिट्टी पे पड़ जाओ उसके कदम, करते सख जमीन को फिर से नरम। जलवा तेरी आंखों का देख ये जलवा, मुझे पास बुला मत शर्मा, तेरी याद में रोज हूँ जलता।

समंदर के जैसे बढ़ती लहर, बवंडर के जैसे ढाती कहर, सोने सा चमके उसका बदन, छू दे तो अमृत बन जाए शहर। असलिया चेहरा उसे सब है पता, चाल है गहरा उसे कुछ न छुपा, दिल है जो ठहरा उसे नहीं है पता, क्या तेरी माया जरा मुझे भी बता। ढूंढू मैं उसको कहां, होठों पे जिसके लिपटा जहां, इतना दर्द क्यों मैंने सहा, जब मिलने ही थे दोनों जहां। रुक गई मेरी सांस भी, महसूस करने की आस भी, खुल जा मुझ में जैसे चाशनी, कट गई ये साली रात भी।

दस कितनी बारी सोनी हनेरी बन चुल जाएंगी हाँ रखना लिखो के पैना किसे नाल मेरे बारे इदा किदा खुल जाएंगी

दिलों का इश्क ही तो देता फिरता है गवाही, वरना बता खुदा होने का सबूत क्या है।

बाहर की, वो जा रहा है कोई शबम गुजार की। वीरा है मैं कदा खुम सागर उदासी,

इतिहास की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: SBS South Asian.
1: पुरानी कहावत है कि सबसे ऊपर जाना है तो बहुत सारी मेहनत चाहिए, लेकिन अगर सबसे ऊपर टिकना है तो माँ की दुआ चाहिए। तुम्हारा मुझ तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि धूल कितनी भी ऊंची चली जाए कभी आसमान को गंदा नहीं कर सकती।
2: Ayo, G-Funk.

natural

0: hit.
1: After hit.
0: After hit. This is SBS South Asian.

SBS South Asian.

0: Dance time pe tu.
1: Dancing far and style.
2: Slow down, boys.